0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़

0: अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करें, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका की रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13

0: से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते,
1: डायमंड बोलता है। दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है।
0: दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बोलता है।
2: उत्सव ज्वेलर्स आओ,
3: यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पूरा पता प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद।
6: कॉल 7055070552।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बाद।
1: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई हैं श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 8:26 हो चुकी है। राम राम जी, सत श्री अकाल, तुसी की हाल चाल है जी। आई होप कि आप सभी बहुत चंगे होंगे, क्योंकि आज का वेदर भी बहुत ही सुहाना वाला है। लेकिन ये कहा जा रहा भैया, बारिश आने में बस कुछ ही मिनटों की देरी है और उसके बाद झमाझम, जो जैसे कि रात बारिश आई थी ना, बहुत तेज वाली बारिश, ऐसी बारिश आने वाली है आज भी। और आज की तारीख यानी कि 22 अगस्त, और यानी कि दिन है शनिवार का। शनि देव भगवान की पूजा की जाती है आप आज, और साथ ही साथ कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो शनि देव की जो सारी शाती चलती है वो नहीं आपके ऊपर, मतलब जब हनुमान जी की पूजा करते हैं आज के दिन, तो साढ़े साती उनके ऊपर नहीं लगती है। तो आगे अभी तक आप सो रहे होंगे तो गलत बात है जी। उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो गई है। सूर्य भगवान भी कह रहे कि उठ जाओ यार, कितना सोओगे, उठो, जल्दी उठो और अपनी सुबह की शुरुआत करो एक अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ। जब आप पॉजिटिव सोच के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं ना, तो बात ही कुछ और होती है। तो बस एक गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं और करेंगे ढेर सारी बातें, ठीक है जी। एक गाना सुनाती हूँ आपको, बहुत बढ़िया सावन का ही गाना है, और ये गाना ओल्ड इज गोल्ड यानी कि सदा बहार वाले गाने हैं, ठीक है जी।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओ। एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूं तो 8:00 यानी कि 35 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 22 अगस्त। और आज

लेकर यानी कि 24 तारीख तक क्या रहने वाला है? अरे अरे बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। जब आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो ही गई है तो बिल्कुल अपडेट आप सभी के सामने हम बताएंगे, यानी कि मुरादाबाद से लेकर देश दुनिया तक की जो खबरें हैं वो आप तक तो मुझे पहुंचानी ही पहुंचानी है। और साथ ही साथ कहते हैं ना, मुश्किलें केवल आपको अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए आती है। वो क्योंकि हम अपने अंदर की ताकत को हम खुद नहीं पहचान पाते हैं, खुद नहीं जान पाते हैं जब तक हमारे आगे कोई मुश्किलें ना आ जाए। और जब मुश्किलें आती है ना तो तब जाकर हमें अपने अंदर की असली ताकत का पता चलता है, और तभी हम, हमारा दिमाग भी, हमारा ब्रेन भी और ज्यादा काम करता है। तो आज सुबह सुबह भैया चाय के चुस्कियों के साथ, और बारिश तो भैया बाहर पड़ी रही है, यानी कि बारिश आ गई है तो आज का वेदर तो है ही सुहाना, साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए बहुत राहत वाला दिन है। भैया कल देखा जाए तो गर्मी काफी ज्यादा थी और धूप वैसा ही, और उन्हें पैदल जाना, बहुत से तो नंगे पाँव जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, बहुत से जो चप्पल पहन कर जाते हैं, लेकिन कल जैसे ही बारिश आई उनको राहत मिली और आज भी उनको राहत मिल रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान के साथ आप कनेक्ट होते हो तो वो आपको किसी भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं, भले वो परीक्षा लेते हैं लेकिन उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। तो आज की तारीख 22 अगस्त यानी कि 22 अगस्त का आज की जो हिस्ट्री है वो बहुत खास है, बेहद खास है। अगर आप चाहते हैं कि आज के हिस्ट्री जानने के लिए और आज 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मुरादाबाद में आखिरकार क्या हो रहा है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो चाय के चुस्कियों के साथ बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और एक और बहुत प्यारा गाना रिमझिम रिमझिम सावन वाला गाना सुनते हैं।

0: हां जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और दिन है शनिवार। और समय की बात करूं तो 8:42 हो चुके हैं। और श्रोताओं, आज का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हमें ये सिखाता है कि अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो आज का इतिहास बेहद खास है, यानी कि आज ही के दिन मद्रास दिवस मनाया जाता है, जो कि 1639 में यानी कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जगह पर जमीन खरीदी थी, उसके बाद उसी जगह पर मद्रास शहर बसा, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। इसीलिए 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया जाता है, यानी कि डे मनाया जाता है। साथ ही साथ यानी कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए यानी कि उनके साथ होने वाले भेदभाव और गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह संगठन बनाया था। और साथ ही साथ आज ही के दिन 1921 में विदेशी कपड़ों पर यानी कि बहिष्कार किया गया था। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी ने लोगों से कहा कि विदेशी कपड़े छोड़ो और अपने देश के बने कपड़े अपनाओ। इसी दौरान विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई जाती है, इसी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा जाता है। और साथ ही साथ चेन्नई का पुराना नाम, एक मजेदार बात याद रखना यानी कि कुछ मजेदार बातें भी होती है श्रोताओं, चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। बहुत कंफ्यूज हो और नहीं पता था तो आपको पता चल गया कि मुझे भी नहीं पता था सच में। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, बाद में इसका जो नाम पड़ा यानी कि चेन्नई। और श्रोताओं, आज की तारीख हमें बहुत कुछ सिखाती है, अपने हक के लिए आगे बढ़िए और अपने देश के बने जो भी वस्तु है उसको अपनाइए। विदेशी चमकती वस्तुओं पर ना जाए, क्योंकि कहते हैं हर चमकता चीज सोना नहीं होता है। इसीलिए अपना अपनी संस्कृति है उसको अपनाइए, और जो विदेशी संस्कृति है उसको बोल दीजिए टाटा बाय बाय। फिलहाल कुछ मैसेज आ गए हैं, उनको भी शामिल करते हैं। यानी कि ये मैसेज आता है हमारे पास, राजेश मीना जी कनेक्ट होते हैं बेंगलुरु से और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। बहुत ही अच्छे आपने गाने प्ले किए हैं, ऑल्ड इज गोल्ड। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना मैम, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया जो कि गलत बात है। रानी नांगल से रिहाना गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए कैसी हैं। हेलो रीना मैम, बिंदास मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं। मैम, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, जम के बारिश हो रही है, क्या बात है। और इनका कहना है कि मैम हम तो चले बारिश में नहाने। अरे बिल्कुल नहाइए, आनंद लीजिए बारिश का भी। अगले मैसेज आता है हमारे पास, राकेश वर्मा जी कनेक्ट होते हैं। चौधरी मुमताज आलम यानी कि मुरादाबाद से, और हम दोनों दोस्त हैं, क्या बात है जी, और अपने दोस्त के लिए गाना सुनना चाहते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये गाना सर मैंने कल रिपीट करा था। एक्चुअली क्या होता है ना, रेडियो पे एक लिमिट होती है कि जो गाना प्ले हो गया है 1 वीक से पहले वो गाना नहीं प्ले हो, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी जो फरमाइश है पूरी करने की, क्योंकि निराश नहीं करना चाहिए। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में आपका ये जो गाना है मैं जरूर प्ले करूंगी आपके लिए। और ये बहुत प्यारी लाइनें भी लिखते हैं, वह दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे, मुझे तुमको भूल कर जिंदा रहूं खुदा ना करे। अरे अरे सर, इतनी गहरी लाइनें भेजते हैं भैया, क्या बात है। गुड मॉर्निंग रीना मैम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, अभी तो छतरी खोलने वाला मौसम नहीं आया है। नहीं सर, हमारे मुरादाबाद में तो बारिश हो रही है, आपके बनारस में नहीं हो रही हो तो वो अलग बात है, लेकिन नमो घाट तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पानी उफान पर है, आपको भी पता होगा। बिंदास मॉर्निंग शो से कनेक्ट हो गए हैं, मोहसिन अंसारी जी बनारस से कनेक्ट होते हैं, तो चलिए भैया एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। बस बने रहिए आरजे रीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 52% विद मेकिंग चार्जेस, 22 किलो सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।

0: धड़कन मूवी से क्या गाना एंजॉय कर रहे हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो आइए जी, दिल के तवे पर रोटियां सेक ले। हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 8 यानी कि 58 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है बिंदास मॉर्निंग शो में। और एक बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि बच्चों के चेहरे पर आए है, रौनक ही मुस्कान ही मुस्कान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या, और साथ ही साथ हमारी प्यारी विमनिया जो मम्मिया है उनको भी राहत मिल गई भैया। हाँ जी, इसलिए कावड़ के चलते आज और ये कहा जा रहा है सोमवार को भी बच्चों की छुट्टियां रहेंगी, यानी कि स्कूल की छुट्टियां रहने वाली। खैर आज तो है लेकिन 24 तारीख यानी कि सोमवार को भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों की छुट्टियां रहने वाली हैं, यानी कि 24 तारीख को। कल 23 है यानी कि कल तो संडे ही है जी, तो संडे को तो हमेशा छुट्टी रहती रहती है। लेकिन सच बताओ सुबह सुबह उठने का जो काम होता है ना भाई, बहुतों के लिए बड़ा हैटिक लगता है, लेकिन सच बताओ सुबह उठना ना बड़ा सुकून देता है, बहुत सुकून देता है। एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है क्योंकि उस टाइम का जो वातावरण होता है बिल्कुल शांत माहौल होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, बस चिड़ियों की चहचहाट होती है और आप होते हैं। एक बार सुबह उठकर देखिए, आप सुबह के जो वेदर है उसको महसूस करके देखिए, आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। जी लेकिन समय की बात करूं तो भाई बच्चे हैं ना, वो एंजॉय करिए और कावड़ देखते रहिए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहेंगे भैया, अगर आप सोच रहे होंगे कि आज और मंडे तक हम कहीं चले जाए घूमने के लिए, तो ये गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि मुरादाबाद में वैसे भी बड़े वाहन हैं, वो तो बंद कर दिया गया है सोमवार तक कि नहीं भैया एंट्री नहीं मिलेगी, तुम्हें कतई भी नहीं मिलेगी। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके लिए एक रोड बिल्कुल सिर्फ कांवड़ियों के नाम है। दूसरा है जो हम सभी के लिए है, जो कांवड़ देख सकते हैं जाकर, लेकिन अभी तक आपने कोई सेवा नहीं की है तो आप आज कल परसों कर लीजिए क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस है। और कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर शिविर भंडारे की जो व्यवस्था की गई है भैया, सभी के लिए है भंडारे की व्यवस्था, तो लेकिन जब भी आप कहीं पर खाते हैं 10-5 रुपए जरूर देकर आए, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ समय की बात करूं तो 9:01, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हूँ। और समय की बात करूँ तो 9:00 यानी कि 12 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख 22 अगस्त दिन शनिवार। और देखिए, इंसान की पहचान ना उसकी आधार से होती है, यानी कि आधार कार्ड। लेकिन सोचिए, अगर आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत हो, स्पेलिंग कोई गलत हो, तो फिर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते। क्योंकि ये कह दिया जाता है, जब आपका नाम ही गलत है तो आपके जितने भी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो अगर आपके भी आधार कार्ड में कोई नाम गलत है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसको आप ठीक करवाइए। क्योंकि आगे चल के बहुत सी चीज़ों में ना परेशानी करने लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। क्योंकि नाम ठीक करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको राशन मिलता है या पीएफ, सब्सिडी और दूसरे ज़रूरी कामों में परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी नाम गलत है तो परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान नहीं होना है। हर मुश्किल का, यानी कि कहते हैं ना, जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। हर किसी के पास सोल्यूशन होता है। तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी नाम गलत है उसको ठीक कराइए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स में और बाकी जो आपके राशन कार्ड हो या पीएफ हो या सब्सिडी हो, जो भी चीज़ में आपका ये आधार, देखिए आधार कार्ड तो आज के टाइम में हर चीज़ में भैया वेरिफिकेशन होना चाहिए। अदरवाइज ये कह दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो गलत ही है भैया, सही नहीं है। यानी कि इसीलिए आपने अपना आधार कार्ड जरूर ठीक करवाना है। और साथ ही साथ ये नहीं कि बड़ों के आधार कार्ड है तो बच्चों के आधार कार्ड ना बनवाएं, बच्चों के भी आधार कार्ड बनवाएं। जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के जो बच्चे हैं और 2 से 3 साल के भी बच्चे हैं, उनके भी आधार कार्ड अब बनने लगे हैं, तो आप उनके भी आधार कार्ड जरूर बनवाइए। क्योंकि हर किसी का आधार कार्ड बनवाना घर में कितने भी मेंबर्स हो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चीज़ें आपको सरकार की तरफ से मिलती हैं और उसका आप लुत्फ़ अच्छे से नहीं उठा पाएंगे। और श्रोताओं, इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि आज की तारीख 22 अगस्त है, आज के स्पेशल डेज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बाहर का जो वेदर है, काली काली बादल, घनघोर घटाएँ छाई हुई हैं और कुछ मैसेज हैं उनको भी शामिल करते ही चलेंगे आगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस परवलीज जी, और ये कुछ लाइनें लिखते हैं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है राकेश वर्मा जी, जो आपने लाइनें लिखी है ना, शायरी वाले लाइनें लिखी है ना, कृपया हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सीधा भैया दिल पर ना छुरियां चलाने वाली आपने शायरियां लिखी है, तो बस ये शायरी आप ही गुनगुनाइए, मैं नहीं गुनगुना पाऊंगी इतनी घातक शायरी लिखते हैं आप। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना मैडम को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमस्कार, आपको भी जी हमारे पूरी रेडियो की टीम की तरफ से नमस्कार। और ये कनेक्ट होते हैं प्रकाश नगर मुरादाबाद से, लेकिन आपने अपना नाम क्यों नहीं बताया, ये तो गलत बात है जी, नाम जरूर बताना है आपने। इनके नंबर के 4 डिजिट है, यानी कि 4510।

0: अरे सर, अभी शायरियां लिखने लग गए हैं क्या? ना जाने किस कदर तुम समा गए हो दिल में। आंधी तूफान की तरह समा गई हैं सर आपके दिल में जो भी कोई है, कि अब हर सांस में बस तेरा ही नाम आता है। जरा सर झूठ है ये तो। लोग पूछते हैं खुश रहने की वजह, और लकीरों में छुपा है तुम्हारा चेहरा, याद आता है। लेकिन बस वो 2-4 दिन के लिए होता है सर। जब इंसान कोई चला जाता है जिंदगी में से, उसको 2-4 दिन याद किया जाता है, फिर तो उसको ना उसका नाम ही निशान नहीं होता है। बस शायरियों में घुसे रहते हैं हम। अरे इससे आगे निकलिए, आगे की जिंदगी भी बहुत अच्छी है, उसको भी इंजॉय करिए। ये नहीं कि एक चला गया तो उसी के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दे, गलत बात है फिर। मोहसिन अंसारी जी, क्या बात है जी, बनारस का वेदर इस टाइम बताइए कैसा है। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग रीना जी, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। चलिए श्रोताओं, फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले आज का स्पेशल डे क्या है। और गाना बहुत ही झकास भैया, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड भी कहा जाता है जी, बीच में क्या कर सकते हैं अब, है ना। चलिए जी, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:00 यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं श्रोता। और आज का स्पेशल डे यानी कि 22 अगस्त, और 22 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए, जब भी दिमाग में यानी कि दूध का नाम आता है ना, तो दिमाग में एक ही आता था, ये की बात याद आती है, गाय का दूध या भैंस का दूध, है ना, हमारे दिमाग में ये ही चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल दूध भी बड़े मॉडल हो गए हैं भैया, सच में। यानी दूध जो जानवरों से, हम यही बोलते हैं ना कि जानवरों से आखिर का दूध हमारे पास आता है, गाय से भैंस से, लेकिन मैं आपको बताऊं, दूध जो जानवरों से नहीं बल्कि पेड़ पौधों से भी हम तैयार होता है दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि रियली, या बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधों से भी दूध प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

जी गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, यानी कि बिंदास मॉर्निंग शो में आप कनेक्ट है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 9:40 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, सात समुंदर पार में तेरे। फिलहाल तो आपके टाइम में कोई नहीं आ सकता है, जी सच बताऊं तो। हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि इंस्टाग्राम के यूजर्स है ये, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के है ना, दिमाग में तो आता ही है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम के जो यूजर्स है, यानी कि हम पहले नंबर पर आता है हमारा इंडिया, यानी कि हमारा इंडिया किसी से कम है क्या भैया? सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया वाले ही हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं आजकल। यानी कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है और वही इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करूँ तो USA है, और थर्ड नंबर पर आता है ब्राजील, और फोर्थ नंबर पर आता है इंडोनेशिया, और यानी कि फिफ्थ नंबर पर आता है जापान। अदर कंट्री में भैया सच बताऊं तो बच्चों को, जो 16 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनको फोन नहीं दिया जाता है, यानी कि उनका सिर्फ फोकस ये किया जाता है कि वो जितना समय हो सके यानी कि स्टडी पर, और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं दिया जाता है कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें अभी स्कूल से आए हो तो कोचिंग जाना है, तुम्हें ट्यूशन जाना है, तुम्हें अभी ये करना है। मतलब बच्चों को आज के टाइम में ना थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं इंडिया की बात करूं तो बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अदर कंट्री में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, और साथ ही साथ हमारे इंडिया में 16 साल से जो कम एज के बच्चे हैं आजकल, उनके पास भी फोन है और वो भी इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाते हैं, और आज सबसे बड़ी कॉमन बात ये हो गई कि ब्लॉग बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बनाने लगे, तो बताइए पढ़ाई में इतना दिमाग कहाँ कोई लगा पाएगा। इसीलिए आपसे जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे विनम्र विनती है कि आप अपने बच्चों को फोन बहुत कम दीजिए। आप अपनी खुद को अपनी लाइफ याद करिए कि क्या आप 12th तक जब आप पढ़ते थे क्या आपके पास फोन था? नहीं ना। आपने, मुझे लगता है कि जो पहले के जनरेशन थी ना, यानी कि उनको कॉलेज भी खत्म हो जाते थे तब भी उनके पास फोन नहीं होते थे, और होते भी थे ना तो कीपैड वाला फोन होता था, सिर्फ उस पर कॉल ही अटेंड कर पाते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बच्चे ज्यादा फोकस यानी कि बुक्स पर लगाते थे और अच्छे से स्टडी करते थे। तो आप खुद सोच कर देखिए, और आप अपने बच्चों को फोन जितना कम देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साथ ही साथ आंखें जो आजकल डैमेज होती जा रही है वो भी ठीक रहेंगी, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है बच्चा, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा संभलेंगे तो शायद आगे के फ्यूचर के लिए और भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कुछ मैसेज हैं वो भी शामिल करते बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते, गुड मॉर्निंग पहुंचाते, वेरी गुड मॉर्निंग जी, शुभ शनिवार की आप सभी को और FM परिवार को, सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे राधे जी। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से ईदगाह मुरादाबाद से सैफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। रईस दुला जी, आनंद भाई जी के क्या हाल चाल है जी? बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पिताजी अभी तक नहीं मिले हैं और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, थैंक यू जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुलाम जिलानी पासा से कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते, वेरी गुड मॉर्निंग सर। निकट फातिमा जी कनेक्ट होती है, रीना दी कैसी हो? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं?

0: हरिओम जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद लाइन पार से और मोहसिन अंसारी जी का कहना है कि आपको टाइम मिले तो काशी विश्वनाथ जरूर आइए. बिल्कुल जी, हम आएंगे, जरूर आएंगे काशी विश्वनाथ. और कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है श्रोताओं, उसके बाद आप सभी के साथ हम कड़क होंगे, कड़क म्यूजिक के साथ. और फिर देखना ये है कि भैया किनका राइट यानी कि आंसर आता है, वो भी सबसे पहले, क्योंकि जो सबसे पहले मैसेज करता है उन वही विनर बनते हैं. कहते हैं ना, पहले और पहले पाओ तभी आप उसका आनंद उठा पाएंगे.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681.
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई. जिग करो, स्वच्छता की जिद करो.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा

0: 52 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख 22 अगस्त और 22 से लेकर यानी कि 24 अगस्त तक मुरादाबाद के जितने भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं भैया उनके लिए खुशखबरी ये है कि छुट्टियां है आपकी मंडे तक। जी कंफर्म हो गया है कि भैया यानी कि 24 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी कावड़ यात्रा के चलते, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम परेशानी ना आए बच्चों को, साथ ही साथ कावड़ियों को भी ना आए, इसीलिए बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है। और सच बताऊं बच्चों का उस दिन मन भी नहीं करता जाने का कि नहीं यार कावड़ देखेंगे, अच्छा लगता है क्योंकि लास्ट सोमवार है 24 तारीख को और कल है यानी कि संडे, और संडे को भैया है फंडे यानी कि एकादशी है कल। संडे इज फंडे। फिलहाल आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट रहिए बिंदास मॉर्निंग शो में क्योंकि आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं मैं कड़क म्यूजिक। आय हाय तन बदन यानी कि बस सोचने लग जाता है कि आखिरकार क्या होने वाला है आज का म्यूजिक, थोड़ा सा दिमाग पर तो जोर डालना पड़ता है। लेकिन मैं बताऊं कि आप सभी के फेवरेट वाला भी गाना है और आप इस गाने के बहुत दीवाने भी हैं और आप आसानी से बता पाएंगे, तो मैं कहती हूँ एक बार रेडियो के वॉल्यूम है ना बढ़ा लीजिए तभी आप सुन पाएंगे, अदरवाइज भैया कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। चलिए हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए जरा। हां जी मैं क्या किथे ध्यान है जी, जल्दी जल्दी सोचो जी, तुसी दिमाग पर जोर डालो तभी आप बता पाओगे इसका राइट आंसर। यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9823789698 पर आपने मैसेज करके बताना है कि जो आखिरकार मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का, ओनली देखिए मूवी भी नहीं पूछ रही, सिर्फ और सिर्फ गाने का नाम बताना है। चलिए वन सेकेंड एक बार और रिपीट करती हूँ। चलिए जितना आसान म्यूजिक मैंने पूछा है अगर आप आज भी नहीं बता पाएंगे तो मतलब आप गाने के दीवाने नहीं है, सच में पता चल जाएगा आज तो मुझे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं उसके बाद लौट कर आती हूँ श्रोता और आप सभी के जो मैसेज आए हैं ना उनको भी शामिल करेंगे। फिलहाल आप सोचिए कि आखिरकार ये कौन सा म्यूजिक है। भैया सिंगर को ना यानी कि पूरे 100 में से 100 नंबर देने पड़ेगा उनको, तो खनक खनक छनक छनक क्या भाई म्यूजिक है सच बताओ, दिल गार्डन ही गार्डन हो जाते हैं। फिलहाल आप मैसेज करेंगे तो और भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।
1: बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन,

0: दूसरे पाछे इतने ना फिरे जितने
1: हाय हाय क्या बात है जी। हेलो जी हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं। बिंदास मॉर्निंग शो में फिलहाल समय की बात करूँ तो 10:01 हो चुके हैं और आज जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था आप सभी के बीच, सुनिए और आप सभी के मैसेज शामिल करने वाले। खनक खनक करते हैं, किनका खनक के साथ राइट मैसेज आया है हमारे पास। एक हमारे पास ना वॉइस मैसेज आता है, तो वॉइस मैसेज आपको हम सुनाएंगे कि इनकी प्यारी वॉइस आखिरकार क्या कहती है।
2: हाय दी, कैसे हो? सॉन्ग है नचले नचले मेरे यार, मैं अफरोज फातिमा।
1: मुझे तो लगा कि आपने बोला कि आजा आजा दीदी मेरे घर। ठीक है जी, आपने राइट आंसर दिया है, आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले। बाकियों के मैसेज देखते हैं भैया। हर महादेव रीना जी, क्या हाल है आपके? जी मेरे हाल तो बहुत बढ़िया है, आप बताइए। ये साफ बोलते हैं भाई, थारे मारे मगर जी मारे हाल चल कति बढ़ियो, आप बताओ कैसे हो। हरियाणवी में बुलवाना चाहते हैं कि आप सर, वो अब थोड़ा सा ना हरियाणवी वाली जो लैंग्वेज वो बंद हो गई है, बोल नहीं पाती इतनी जल्दी में अब। कभी आमने सामने आइए फिर बात करेंगे हरियाणवी लैंग्वेज में। मोहसिन अंसारी जी कहते हैं नचले नचले मेरे यार। बबली अनजान जी कनेक्ट हो गई हैं इनके साथ, इनकी दोस्त हैं यानी कि गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैसेज की बात करूं तो मैडम जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके जी, थैंक यू। खान अख्तर जी कनेक्ट हो गए हैं बिजनौर से।

Reena Madam Ji, good morning, very good morning Ji. I am Dolly Muradabad से. Oh, क्या बात है Dolly Ji, कैसी हैं आप? नाम भी बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है. और गाने का नाम बताती है, झुमका उठा के लाया मेरा यार वे. ओके, राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है.

अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती हैं। रीना दी नमस्ते, नमस्ते जी, आई लव यू। ओह क्या बात है जी, यानी कि भैया पूरे लड़की प्रपोज कर देती हैं, यानी कि सभी के सामने। सही बात है, ये प्यार सच्चा होता है जो सभी के सामने, एक दूसरे के सामने कहने की हिम्मत होती है, आई लव यू। तो आई लव यू टू जी आपको भी। और इनका कहना है कि आनंद भाई जी के पापा मतलब मिल गए। नहीं जी, अभी तो कोई अपडेट नहीं है, भगवान से बस दुआ यही कर रहे हैं कि मिल जाए, प्रार्थना यही है कि जल्दी मिल जाए और आप सभी के बीच आनंद जी भी कनेक्ट हो जाए। और देखिए श्रोताओं, एक चीज और बताना मैं भूल गई, आज की तारीख यानी कि 22 अगस्त है, कल 23 अगस्त है। अगर आपने अभी तक अपने सिलेंडर के EKYC नहीं कराया तो प्लीज करवा लो भैया, आप ही की फायदा इसमें, अदरवाइज सब्सिडी के बाद तो छोड़िए, जब सिलेंडर ही बुक नहीं होंगे तो क्या ही कर लेंगे। EKYC बहुत जल्दी है, यानी कि आज लास्ट डे है आपके पास, करवा लीजिए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, बाय बाय, मिलेंगे आपको।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सब के बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है।
0: लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहां पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
3: रवि कुमार।
2: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
3: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवाज मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
2: जी।
3: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
2: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
3: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
2: जी,
3: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल,
2: अच्छा,
3: योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
2: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा?
3: वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
2: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
3: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें बहुत आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
2: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
3: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
2: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
3: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
2: जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओ, ये थे रवि कुमार जी बरौली अही से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: एक परिवार के लिए पक्का घर मतलब बारिश की चिंता से राहत,
0: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
1: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
0: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
0: बरौली अहीर के गांवों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
1: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
0: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
0: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
1: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
0: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
1: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
0: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी
2: है। तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन लोग आ करते हैं तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं और बच्चे अपनो खाना पाना देते रहते हैं तो कचू के तब जाते हैं आते हैं हारी दुखारी वही में आ जाती है।
2: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे चार पैसे रहते तो आपको अपनी बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
4: हाँ वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खाते है।
2: हाथ पे पैसे होते तो आप अपना अपनी मन मर्जी से खर्च करती है ना।
4: हाँ फिर तो कर लेते आ जाते हैं तो
2: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
4: सरकार से ये है कि पैसे भी मिलते जाए अपना खर्चा तो किनते जाए गरीब आदमी और कहा है।
1: किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
0: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
1: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
0: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
1: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
2: तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
5: मैम, जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम
2: जी,
5: और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम। इनके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है
2: जी। तो सर, इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
5: मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें
2: जी,
5: तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबीजी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
2: तो सर, अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसके लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हों।
5: मैम, इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम,

0: पुणे में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास, दिव्यांग और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम, और जॉब कार्ड भी है। अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी राम जी योजना में भी काम कर रहे हैं।
1: आज सर अब बात आती है महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।
0: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबी जी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबी जी राम जी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
1: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं।
0: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के साथ में बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर दें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कारण से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं, उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहें 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल। सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
0: मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है कहीं भी आती है तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बस मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
0: मैम संदेश यही है अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें। अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
2: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है।
3: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
2: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
3: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
2: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
3: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
2: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
3: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
2: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
3: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
2: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
3: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
2: आप सुन
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
8: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। सैटरडे ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग है एंड बाहर के मौसम की अगर बात करें तो बाहर का मौसम सुहाना है। कहीं बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो कहीं हल्की से सूरज की किरणें भी निकल रही हैं। और खुशी भी स्टूडियो पहुंच चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपकी दोस्त हूँ खुशी, लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। अब आप सोच रहे होंगे सैटरडे मॉर्निंग में खुशी कैसे आ गई है, तो हमने कहा देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इतना मिस करते हैं हमें, तो चलते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो हम आ गए और वक्त अभी हुआ है 10:27। 22 अगस्त की तारीख है आज।

दोस्तों, शनिवार की इस प्यारी सी सुबह एक बात हमेशा अपने साथ रखिएगा कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी संभावनाओं की पहली सीढ़ी होती है। हो सकता है आज आपके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन अगर हाँ नजरिया बड़ा है और मेहनत पर विश्वास है तो आपका हर छोटा कदम आपको बड़ी मंजिल के और करीब ले जा सकता है। इसीलिए अपने सपनों को सीमाओं में मत बांधिए, अपनी सोच को खुला और असीम रखिए, क्योंकि छोटी शुरुआत कोई कमजोरी नहीं बल्कि बड़ा, जी हाँ दोस्तों, बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बस आप शुरुआत तो कीजिए, एक कदम बढ़ाइए। तो आज का विचार बस इतना ही कि बड़ा सोचिए, छोटी शुरुआत कीजिए, लगातार प्रयास करते रहिए और एक दिन की आपकी सफलता खुद आपकी पहचान बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सफलता ही आपकी पहचान बनेगी। और बस आपके लिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपका शनिवार खुशियों से भरा हो, उम्मीदों से सजा हो और कुछ नया करने का हौसला है। तो आप भी लाइफ में कुछ भी अगर अचीव करना चाहते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, तो सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी ना दोस्तों, कंटिन्यू। और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब खुद पर भरोसा रखते हैं ना और ऊपर वाले पर, तो हर चीज नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। और आपके यहाँ पर लगातार बहुत प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, ठीक है? तो आप कहीं मत जाइए और अपने संदेश मुझे पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस प्यारे से मौसम का भी आनंद लेते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, वक्त हुआ है 10:40। अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और सच कहें दोस्तों, भगवान को देखने के लिए ना हमेशा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कभी माँ की ममता में तो कभी पापा की डांट और उनके साय में भी हमें भगवान का रूप दिखाई देता है। माता पिता वो खूबसूरत नेमत हैं जिनके होने से हमारी दुनिया पूरी लगती है। इसलिए अगर आपके पास भी आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने मम्मा पापा के पास रहते हैं, तो बहुत लकी हैं आप। तो आज बस उन्हें कह दीजिएगा, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं। जब वो ये बात सुनेंगे ना, तो सच में वो फूले नहीं समाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम ना सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना, सिवाय अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। और अगर पेरेंट्स कुछ अच्छे के लिए बोलते हैं तो हमें लगता है ओहो, मम्मा तो बार बार हमें रोकती टोकती रहती हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, उन्होंने चीज़ों को अनुभव किया होता है एंड उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, तो वो हमें अच्छे के लिए हमें गाइड करते हैं। एंड कभी भी उनकी बात को अनसुना मत करना और हमेशा उनकी बात को फॉलो भी करना है, ठीक है। चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दोस्तों के यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं, तो बिना किसी देरी के जल्दी से शामिल करते हैं आज की मॉर्निंग। हमारे जो लिसनर्स हैं वो क्या पहुँचाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं मोहम्मद यासीन अंजान जी, दादा बाबू रोड, गिरिडीह, झारखंड से। आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। साथ में इनकी दोस्त भी हैं रईसुल अंसारी जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए कैसे हाल चाल है आपके। वैसे उम्मीद तो हम करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता स्वस्थ होंगे। और ये कहते हैं कि आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। बहुत प्यारा गाना है, सुनवाएंगे सर आपको। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, हाल चाल आप इतने प्यार से पूछते हैं ना, अगर इंसान स्वस्थ भी ना हो ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास एक वॉइस नोट आया है, तो उसको भी हम क्लिप प्ले करते हैं एंड आज की सुबह हमारी लिसनर क्या पहुंचाती है अपनी आवाज में, सुन लेते हैं जरा।
1: गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं अफरोज फातिमा एक शायरी लेकर आई हूँ। न जाने कैसी उलझन है सुकू होने नहीं देती, न जाने कैसी उलझन है सुकू होने नहीं देती, तुम्हारी याद की शिद्दत मुझे सोने नहीं देती। बहुत नजदीक होकर भी ये कैसी दूरियां तुझसे, बहुत नजदीक होकर भी ये कैसी दूरियां तुझसे, ये मेरी कम नसीबी है तेरा होने नहीं देती। मेरी मजबूरियां हैं क्या मेरी आंखों में देखे वो, मेरी मजबूरियां हैं क्या मेरी आंखों में देखे वो, मेरी आंखों में आंसू है अनारोने नहीं देती, मेरी आंखों में आंसू है अनारोने नहीं देती। मुझे एक सॉन्ग सुनना है, दुआ कीजिए। मेरे दोस्त हैं मेरी बेस्ट लाइबा, मेरी सिस्टर नजमा, दरक्सा, राबिया, रुकैया और आसिया, और मैं सभी दोस्तों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सभी को एडवांस में जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो।
0: वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हम बहुत अच्छे हैं एंड आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको प्ले करने का। एंड नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। दुर्गी सैनी जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं जिला कल्याणपुर मुरादाबाद से। तो दोस्तों आप भी अपने संदेश पहुंचाइएगा और अभी लौट कर आते हैं तो कुछ और अपडेट आपको देनी है, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना है खुशी के साथ, कहीं नहीं जाना है और यूं ही मुस्कुराते रहना है, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो खुशी को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलिए कोई तो हमारी वजह से, मतलब किसी के चेहरे पर खुशी की छोटी सी कोशिश से खुशी तो आई। और बाकी हम भी खुश होते हैं जब आप सब हैप्पी होते हैं। तो चलो एक खूबसूरत से गाना हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: जा दिल मेरा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी ये

Yes. अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। सैटरडे मॉर्निंग है एंड खूबसूरत सा मौसम भी है, सुहाना सा, और आपकी दोस्त खुशी भी आपके साथ है। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन इस समय घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं एंड वजह है उत्पादन में कमी, घटता स्टॉक और त्यौहार सीजन में बढ़ती मांग। सरकार के मुताबिक मौजूद सीजन में करीब 306 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत लगभग 28 से 29 करोड़ टन के आसपास है। वहीं करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर मात्रा एथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट हुई है एंड कीमतों पर लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन चीनी के लिए शुल्क मुफ्त यातायात की अनुमति दी है। मकसद है कि बाजार में सप्लाई बढ़ाना और त्योहारों से पहले कीमतों को नियंत्रण करना है। अब जो चाय पीने के शौकीन है ना, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं तो अब थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है राइट नाउ 11:01 हो गए हैं और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आप सभी के लगातार आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और कुछ दोस्तों कह रहे हैं कि मैम, चीनी महंगी हो या सस्ती हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन भाई सोचिए, जो इस्तेमाल करते हैं, जो चीनी, जो चाय के शौकीन है, वो जो शुगर वाली चाय पीते हैं, उनके लिए तो चीनी चाहे महंगी हो जाए या सस्ती, वो तो चाय पीना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अरे यार, मैं 4 टाइम चाय पीता हूँ, अब मुझे 2 टाइम पीनी पड़ेगी सुबह और शाम। और आपकी जो मैसेज है उनको भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, नमस्कार आरजे जी, आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज हमें पहुंच रहा है धनूरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, खुशी मैडम जी को गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, उमर शंकर जी का, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रुद्रपुर से, एंड साथ में इनकी फैमिली भी है, अवंतिका सिंह है, अर्चित सिंह है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहां से आए हैं, जरा इस पर भी हम नजर घुमाते हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है, गुलाम जलानी पाशा जी का, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मेहराजुद्दीन जी कश्मीर से, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। सैटरडे मॉर्निंग खुशी आ गई है, कैसा लग रहा है आपको बताइए एवरीवन। उम्मीद करते हैं अच्छा ही लग रहा होगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अयूब खान जी का, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ऐसा लगता है जब आप सब इतना सारा गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, जैसे हम जब क्लास में जाते थे ना, स्कूल जाते थे और जैसे ही क्लास में टीचर आती थी तो सब बच्चे खड़े हो जाते थे, स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मैम, तो मैम को भी रिप्लाई देता गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छा लगता था ना। तो मुझे भी कभी कभी टीचर वाली फीलिंग आती है, बट ये आपका प्यार है, आप हमारी दोस्त हैं, अच्छा लगता है जब आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं हमें। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसे हैं आप, मैं अच्छी हूँ, निकट फातिमा जी मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह। और ये कुछ लाइनें लिखती हैं कि हसरत कुछ और है, वक्त के इल्तिजार कुछ और है, कौन जी सका है जिंदगी अपनी मर्जी से, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। एग्जैक्टली राइट यार, ऐसा होता है कभी कभी, चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहते भी हैं और ये सही भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और जो प्रभु करते हैं वो बेहतर नहीं फिर बेहतरीन होता है। एंड लगातार आपके यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं, मैं सभी को शामिल करूंगी। ठीक है, आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बुद्धि बिहार से अजय सिंह जी। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। आप बस यूं ही बने रहिए, मुस्कुराइएगा और अभी लौट कर आएंगे तो कुछ और भी अपडेट है अपनी मुरादाबाद के बारे में जो आप तक पहुंचानी है।
1: आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है,

0: जी मैम, अगर आपसे कोई और औरत है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है, वो आपसे इस बारे में पूछे, तो आप उसको कैसे और क्या बताएंगे?
1: जी मैडम, मुझसे पूछती है, कई महिलाओं ने पूछा भी है मेरे से कि ये आपकी पेंशन कहाँ से आती है। मैंने काफी महिलाओं को बताया कि ये वहाँ समाज कल्याण में जाओ, जन सेवा केंद्र से आवेदन कराओ, आवेदन करा के 3-4 महीने में आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी।
0: मैम, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, इसके आवेदन प्रक्रिया से लेकर इसके लाभ के पैसे मिलने तक क्या आपको कोई परेशानी हुई है?
1: नहीं मैडम, हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
0: ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि योजना का लाभ मिल रहा है और सरकार आपके लिए ये लाभ वाली चीजें कर रही है। धन्यवाद। देखिए आप सभी कैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इन सभी महिलाओं को मिल रहा है जो इनके घर में उपयोग हो रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे हम सरकार का। और
1: मैडम धन्यवाद सरकार,
0: थैंक यू सो मच। रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज बिजनौर की आज के हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम व आप कहाँ से आई हैं यह बताएं।
2: जी मेरा नाम बाला देवी, गीता नगरी बिजनौर से आए हैं।
0: आप बिजनौर की ही रहने वाली हैं। मैम जो योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है?
2: जी इसका लाभ मिल रहा है।
0: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आपको इस योजना के बारे में कब और कैसे पता चला?
2: जी हमें खुद ही पता चला था समाज कल्याण विभाग से।
0: मैम आपने इसका आवेदन कैसे किया?
2: जी ऐसे किया था कल्याण समाज कल्याण विभाग से,
0: विभाग से जो ये विभाग बता रही है इसी से आपने आवेदन किया। क्या उस दौरान किसी भी व्यक्ति ने कोई परेशानी की इस बारे में कि ये ना हो आवेदन प्रक्रिया ना हो पूरी या कोई शुल्क लिया हो आपसे?
2: नहीं नहीं, हम सब शुल्क लिया पता भी नहीं था, यहाँ यहाँ का पता चला था।
0: अच्छा, आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसका आप उपयोग कैसे करती हैं अपने घर में?
2: मुझे घर से भी काम आ रहा है।
0: आप क्या करती हैं मैम? कोई और औरत अगर आपसे जानना चाहे इसके बारे में तो आप उसको क्या बताएंगे?
2: यही बताएंगे कि समाज कल्याण विभाग से पता करो, वहीं सारा पता चलेगा।
0: क्या आप इस मिलने वाले सरकार से लाभ, जो सरकार से लाभ मिल रहा है आपको, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
2: जी बहुत
0: धन्यवाद मैम आपने जो हमें ये जानकारी दी। तो देखिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, उनके घर तक पहुँच रहा है और वो संतुष्ट भी है। धन्यवाद।
3: आपने सुना, एक महिला के लिए पेंशन की राशि सिर्फ एक रकम नहीं होती।
4: कभी उससे घर की छोटी जरूरत पूरी होती है,
3: कभी दवा का खर्च निकलता है
4: और कभी अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास मिलता है।
3: यही तो सामाजिक सुरक्षा का असली अर्थ है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर।
4: और जब सरकारी विभाग लाभार्थी तक योजना की जानकारी और प्रक्रिया पहुँचाते हैं तो सरकारी योजना और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो जाती है।
3: यही वजह है कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना की सफलता में केवल नीति और बजट ही नहीं
4: बल्कि उसे जमीन पर लागू करने वाले अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन की मेहनत भी महत्वपूर्ण होती है।
3: जब योजना की जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे, आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाए और पात्र लाभार्थी को उसका लाभ मिले,
4: तब विकास का असर सरकारी कागजों से निकलकर सीधे परिवार की जिंदगी में दिखाई देता है।
3: बिजनौर की इस विकास धारा में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना भी अपनी भूमिका निभा रही है।
4: एक तरफ प्रदेश स्तर पर योजनाओं का संचालन,
3: दूसरी तरफ जिला स्तर पर उनका क्रियान्वयन
4: और तीसरी तरफ लाभार्थी तक पहुंचती सहायता,
3: यही तीनों मिलकर किसी योजना को वास्तविक बदलाव में बदलते हैं।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का वास्तविक मूल्यांकन भी इसी बात से होता है कि उनका लाभ पात्र परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
3: और बिजनौर की ऐसी कहानी हमें बताती है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थी की जरूरत आपस में जुड़ती है तो बदलाव महसूस किया जा सकता है।
4: लेकिन बिजनौर की तस्वीर सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है,
3: यहाँ गाँव की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विकास के अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं।
4: एक तरफ खेतों में मेहनत करता किसान,
3: दूसरी तरफ अपने परिवार को संभालती महिलाएं,
4: आगे बढ़ने का सपना देखते युवा
3: और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद करते बुजुर्ग,
4: यही मिलकर बनते हैं बिजनौर की विकास गाथा।
3: और इस गाथा में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उन लोगों तक सहारा पहुंचाने का काम करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
4: निराश्रित महिला पेंशन योजना की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तभी सतर्क है
3: जब उसका लाभ समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे।
4: जब सहायता लेने के लिए किसी आर्थिक खर्च का

0: योजना हो
1: और जब लाभार्थी को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिले।
0: बिजनौर की धरती पर बह रही विकास की धारा,
1: इतिहास की विरासत को साथ लेकर वर्तमान की जरूरत को समझते हुए
0: और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है।
1: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: और यही थी बिजनौर में बहती विकास धारा की कहानी,
1: एक ऐसी।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी। वक्त हुआ है 11:28। और दोस्तों, शादी के जोड़े में इंसानियत की मिसाल, जी हाँ, केरल के कन्नौर से एक तस्वीर सामने आई है जिसने शादी की खुशियों के बीच इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश की है। जी हाँ दोस्तों, केरल के कन्नौर से एक तस्वीर सामने आई है जिसने शादी की खुशी के बीच इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश की है। डॉक्टर श्रीन सुबैरी अपनी शादी की रस्मों में थी, तभी कैटरिंग टीम की दो महिलाओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई एंड एक के नाक से खून आने लगा तो दूसरी को चक्कर आने लगे एंड दुल्हन ने बिना देर किए रस्म रोक दी और तुरंत दोनों महिलाओं को प्राथमिकता उपचार दिया। सोचिए दोस्तों, शादी का जोड़ा पहने हुए भी किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाना, यही तो असली खूबसूरती है। और डॉक्टर श्रीन ने साबित कर दिया कि इंसानियत से खूबसूरत कोई भी गहना नहीं होता और मदद से बड़ा कोई भी संस्कार नहीं होते। इसलिए दोस्तों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, वैसे तो पहले हम डॉक्टर श्रीन के लिए ज़ोरदार तालियां बजाना चाहेंगे एंड सल्यूट करते हैं हम उनको कि उन्होंने अपना फ़र्ज सबसे पहले निभाया एंड कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे पहले होती है और वो खुद शादी के खूबसूरत जोड़े में उनकी रस्में हो रही थी लेकिन उन्होंने उन सबको रस्मों को बीच में ही स्टॉप करके पहले उन दो महिलाओं की जान बचाई। सल्यूट है मैम को और आपके जो यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। तो दोस्तों, कभी आपको लगे कि हाँ, मुझे किसी की मदद करनी चाहिए, कोई हमसे अगर हेल्प ले रहा है या फिर किसी को आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपको मदद करनी चाहिए, कोई परेशान हो रहा है, कोई मदद के लिए आपकी हेल्प मांग रहा है, तो ज़रूर मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो बड़ा है वो इंसानियत है एंड जब इंसान इंसान के काम आता है तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। और एक दूसरे की कभी आपने सोचा भी ऐसा, मतलब कभी आपने किया भी होगा दोस्तों कि बिना किसी निस्वार्थ के सेवा करना, किसी की मदद करना, मतलब ना एक अलग ही खुशी देता है और अच्छा भी लगता है, खुद पर प्राउड भी फील होता है कि हाँ, हमने कुछ तो अच्छा किया, किसी के तो हम काम आए। तो अगर ज़िंदगी में आपको भी ये अवसर मिले तो बिल्कुल भी मत गवाइएगा। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज जो आए हैं मैं उनको भी शामिल कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शहीद इशारी खली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं गोरी ही कलाइयां, बिल्कुल सुनवाएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हाल हैं आपके? बहुत अच्छे हैं सर हम। और ये कहते हैं कि मैम, हमें आपके शो का इंतजार होता है। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से, थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपने इंतजार किया और हम आ गए। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से। रिजवान खान जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं। फैजा नाज भी हैं और ये कहती हैं, खुशी जी हमें एक गाना सुनवा दीजिएगा, सात समुंदर पार से, गुड़ियों की बाजार से। अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है, चलो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिस्नर, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोकल फूल वोकल की, क्योंकि मुरादाबाद में रहते हैं और मुरादाबाद की अपडेट आप तक शेयर न करें ऐसे लगता है। अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है सब आपको बता दें खुशी। दोस्तों, मुरादाबाद में कांवड़ियों के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जोरों शोरों से चल रही हैं। और 22 और 23 अगस्त को भंडारों का आयोजन किया जाएगा एंड रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी उत्तराखंड के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारियां भी जारी हैं। एंड बात करें अगर मुरादाबाद के मौसम के बारे में ना, तो दोस्तों आज मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें तो बादलों से घिरे रहने की संभावनाएं हैं और बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। मतलब बादल तो रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हमारे पास सभी टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अमरोहा से मैसेज आया है नेहा जी का एंड ये कहती हैं, नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। हाँ जी, सब लोग बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया आपने हमारे हाल चाल जाने। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मेरा नाम सिस्टर है और सिस्टर कहती हैं कि मैम मुझे ट्रैक सुनवा दीजिएगा। श्योर, हम पूरी कोशिश करेंगे सिस्टर इस ट्रैक को प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, आप कैसी हैं? प्रीति जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं मोहिनी जी। कुंदनपुर मुरादाबाद से नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद से सनी अग्रवाल जी का, कांशीराम नगर से। एंड एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की है सर ने, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। जी बिल्कुल, ये ट्रैक हम सुनवा देते हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी हमारे पास तमाम मैसेज आए हैं तो सभी को शामिल कर लेते हैं। एंड एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं महनूर तुर्क मलक से एंड कहती हैं, गुड मॉर्निंग दी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लतावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं। धन्यवाद सर, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं संदीप सागर जी, जिला मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, कहते हैं कि आज हम आपका शो सुन रहे हैं उत्तराखंड में। अरे वाह, क्या बात है, आज उत्तराखंड घूमने के लिए गए हैं आप। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर शमशाद अली जी का, मुरादाबाद से ये मैसेज पहुँचाते हैं एंड कहते हैं कि आज मैम हमने फर्स्ट टाइम आपको मैसेज किया है और ये भी एक ट्रैक सुनना चाहते हैं कुमार सानू जी की आवाज़ में। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, इनकी फैमिली भी है, शुक्रिया आपने मैसेज पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, हर हर महादेव खुशी मैम, बबलू सैनी जी का मुंबई महाराष्ट्र से। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी अपना मैसेज पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं अलीशा का मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं एक प्यारा सा ट्रैक सनी अग्रवाल जी की रिक्वेस्ट पर, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन जाने से पहले कहना चाहूंगी कि दोस्तों, दिन कैसा भी हो चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। और याद रखिए दोस्तों, खुशी बांटने से ना खुशी बढ़ती है। आरजी खुशी इन्हीं बातों के साथ अब जाने की आपसे अनुमति लेती है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी टुमारो मॉर्निंग 10 बजे। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और अपना भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभकई में। एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
1: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
0: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम सब उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
0: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
0: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
0: भाभी, आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
1: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
0: फिर क्या किया गया भाभी?
1: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
0: भाभी, बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
0: तो भाभी, प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
1: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
0: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है, टाइफाइड कैसे होता है?
1: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है, इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है, गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल, सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
0: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना, लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है, ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
0: और इससे बचने का क्या उपाय है?
1: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें। पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का, उबाल कर ही पिए। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
0: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से बीमारी पास भी नहीं भटकेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
0: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है। ये बीमारी कैसे होती है?
1: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
0: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
0: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
1: पास के मोहल्ले में हन्नू काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नू को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
0: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
0: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
1: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
0: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है। कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
0: इससे बचने का उपाय क्या है?
1: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
0: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
1: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
0: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
1: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आंखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है। इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है। और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
0: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
1: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
0: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं। क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
1: बिल्कुल ठीक। बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मल मूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
0: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
1: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
0: तो लोग इससे कैसे बचे?
1: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
0: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
1: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
1: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
0: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
1: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए। गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
0: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीले जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
0: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
1: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
0: तो फिर भाभी, ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए, रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
0: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखें और समय पर इलाज करवाएं तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए, कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहाँ और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सब के बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार, जिस परिवार

0: खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहां पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
3: रवि कुमार।
2: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
3: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवास मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
2: जी।
3: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
2: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
3: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
2: जी,
3: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
2: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा?
3: वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
2: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
3: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें बहुत आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
2: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
3: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
2: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
3: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
2: जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अहीर से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: एक परिवार के लिए पक्का घर, मतलब बारिश की चिंता से राहत,
0: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह, और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
1: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
0: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
0: बरौली अहीर के गांव में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
1: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
0: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
0: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
1: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं, पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
0: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
1: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
0: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी।
2: तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन का क्या कहते हैं?

0: खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं और बच्चे अपन खाना पाना देते रहते हैं तो कचू के तो जाते हैं आते हैं हारी दुखारी में वही आ जाती है।
1: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे चार पैसे रहते तो आपको अपनी बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
0: हाँ वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खर्च है
1: हाथ पे पैसे होते तो आप अपना अपनी मन मर्जी से खर्च करती है ना।
0: हाँ फिर तो कर लेते आ जाते हैं तो
1: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
0: सरकार से ये है कि पैसे भी मिलते जाए अपना खर्चा तक मिलते जाए गरीब आदमी और का है।
2: किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
3: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
2: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
3: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
2: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे।
1: आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैम।
1: तो सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
4: मैम जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम
1: जी,
4: और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम, इनके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है
1: जी। तो सर इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
4: मैम ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें
1: जी,
4: तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
1: तो सर अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हों।
4: मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम, उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है, अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास दिव्यांग, और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम, और जॉब कार्ड भी है, अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी राम जी योजना में भी काम कर रहे हैं।
1: आज सर अब बात आती है महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं?
4: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबीजी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबीजी राम जी योजना है बहुत अच्छी योजना है, इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबीजी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
1: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं?
4: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव बच्चे भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर लें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कार्ड से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं, उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहे 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल। सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
4: मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है कहीं भी आती है तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बस मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
4: मैम संदेश यही है अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें। अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
2: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है।
3: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
2: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
3: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
2: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
3: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
2: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
3: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
2: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
3: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
2: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
3: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
2: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: Joker.
1: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
2: कुछ नया है,
1: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
2: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
1: जी
2: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
1: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
1: जी।
3: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
1: जिसका नाम है सोच बदलो।
3: जिसका नाम है सोच बदलो।
1: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
4: हेलो एवरीवन, मैं आरजी रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
1: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
2: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
1: करेक्ट?
2: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं? तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
1: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
2: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
1: एडवाइस
2: कर रहे हैं कि तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
3: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
1: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
4: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो।
0: अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: को मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पर लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच

0: बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं, जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं, जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है, हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
2: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
2: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
3: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
3: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात है,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: कहा। तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे हो, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है, बिल्कुल
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको वो सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडिमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है, फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रेट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पर बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
0: या नहीं है।
1: हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
0: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
1: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
1: मेरे को माना तो बाद ही एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद ही मिली हुई
2: है। वैसे
1: बाइक क्वालिफिकेशन मैंने एम कॉम किया हुआ है, एम बी ए किया हुआ है और एल एल बी मेरा है और नाउ आई एम परसुइंग एल एल एम।
0: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
1: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एम कॉम करना है, उसके बाद मेरे को एम बी ए करना है, लेकिन एल एल बी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
0: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
1: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कम्प्लेंट करी थी।
0: ओके।
1: और वो फेक कम्प्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल इथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल
3: चर्चा होगी
1: मैंने पढ़ाई।
3: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला।

0: मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
3: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवरस्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
4: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
9: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
8: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
9: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
8: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
10: हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अब पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और मेरे साथ में है प्यारी सी आरजे रीना। जी हाँ, आपको पता ही है एवरीवन कि हम एवरी डे आपके लिए लेकर आते हैं आपका खास कार्यक्रम महिला मंच। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा तो बहुत होती है लेकिन बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही है। दहेज प्रथा। शादी दो लोगों की जीवन की नई शुरुआत होती है लेकिन अगर इस शुरुआत से पहले ही सामान, पैसे और गाड़ी की मांग सामने आ जाए तो क्या ये रिश्ता सच में बराबरी का रह जाता है? शादी कोई सौदा नहीं, ये दो लोगों का साथ है, दो परिवारों का जुड़ना है। इसीलिए रिश्ता शुरू होने से पहले मांगों की नहीं, समझ और सम्मान की बात चाहिए।
11: बिल्कुल सही कही तुमने, क्योंकि सम्मान की बात होती है तो वहाँ मांग की बात नहीं होती है। और बात करेंगे दहेज की मांग आखिरकार क्यों होती है। कभी आपने सोचा है कि शादी के समय आखिर इतनी सारी मांगे क्यों जुड़ जाती है? कहीं कार चाहिए, कहीं महंगे गहने, कहीं फर्नीचर और कहीं नगद पैसे। शुरुआत में शायद एक छोटी सी मांग होती है लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद और फिर दबाव बन जाती है। खासकर लड़की माता पिता सोचते हैं कि कहीं उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की मांग और रिश्ते की नींव अगर मांगने पर रखी जाए तो क्या वह नींव मजबूत रह पाएगी? क्या अपनी सोच बदलनी होगी? और शादी को आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि जीवन भर का साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जहाँ रिश्ते में मांग हो वो रिश्ता कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपसे मांगा जा रहा है, कल को शादी होने के बाद आपके ऊपर और दबाव डाला जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर और दबाव डाला जाएगा कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है कि जहां पर ये मांगे आती वहां रिश्ता खत्म करो। दुनिया में बहुत लड़के हैं यार, और आजकल मुझे लगता है की लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही है, उनके माता पिता उनके पैसे पढ़ाई में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी सोचो। और दहेज प्रथा मुझे लगता है कि जड़ से खत्म कर देनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बैन होना चाहिए। और रीना बताए, सरकारी नौकरी और दहेज, जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे,
11: उनकी तो और भी ज्यादा डिमांड होती है। पता नहीं कौन से 30 मार्क खान से वो पढ़कर आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं, जो उनके अंदर भी सोच भी वैसी आ जाती है। मतलब कह रहे हैं ना, जितने शिक्षित हो रहे हैं लोग उतनी ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है।
0: अक्सर सुनने को भी मिलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है इसीलिए मांग तो होगी ही, लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या सरकारी नौकरी किसी इंसान की कीमत तय करती है? सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मेहनत और उपलब्धि है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन शादी के बदले किसी परिवार से कार या लाखों रुपए मांगना सम्मान नहीं बल्कि दबाव बन सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कितना समझते हैं, उनके विचार कैसे हैं और वे जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे। नौकरी अच्छी हो सकती है लेकिन अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है।
11: बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इंसानियत अच्छा होना चाहिए बस।
0: देखो, अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो और वो इंसान हमें ना समझे
11: तो क्या फायदा,
0: उस रिश्ते में फिर इंसान नहीं रह पाएगा।
11: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल इंसान पता है क्या देखता है, कोई भी हो पैसे वाले के घर शादी होना चाहिए। ये नहीं पता कि भाई जिस पैसे, देखो हर किसी को हम नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ लेते हैं शादी में पैसे, और बहुत ऐसे होते हैं नहीं भैया हमें तो पूरा खजाना ही दे दो। मतलब लगता है कुबेर जी को ही दान में दे देना चाहिए उनको तो।
0: बेटी तो वो देते ही देते हैं, साथ में वो इतनी डिमांड्स भी लोग करते हैं। पर रीना, मुझे ऐसा लगता है, देखो जो अपने जिगर का टुकड़ा देता है अपनी बेटी को पाल पोस कर बचपन से बड़ा कर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है जिसने अपना अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
11: मेरे तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बहुत से नहीं समझते है ना, मुझे लगता है कि देखिए आज आप किसी की बेटी के लिए मतलब अपने घर में शादी करके ला रहे हैं, उस दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके घर में भी लड़की होए और आपकी आपसे बोला जाए डबल यानी कि दहेज दो, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि मैंने शायद गलत करा था दहेज लेके। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा तो देखो भरना पड़ेगा आपको। तो खुशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कार चाहिए या साथ चाहिए?
0: देखो, कार तो मैं खुद भी पैसे कमा कर ले सकती हूँ, बट तुम्हारा साथ मुझे चाहिए क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है।
11: ये तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आज मुझे हमें दुनिया को बताना है ना कि कार नहीं साथ ढूंढो, क्योंकि आज के समय में साथ किसी का पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है श्रोताओ। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शादी की बातचीत में कभी कभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या क्या मिलेगा, कार होगी या नहीं, इतने गहने होंगे या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी इस सवाल को बदल कर देखिए, पूछिए क्या दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मुश्किल समय में साथ खड़े होंगे, क्या लड़की अपने सपने पूरे कर पाएगी। क्योंकि कार सड़क पर साथ चल सकती है, लेकिन जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए। इसीलिए शादी में चीजें कम और समझ ज्यादा हो तो ये रिश्ता कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कार चाहिए दहेज में, तो सावित्री जैसी पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो कार नहीं, समझ होनी चाहिए आप सी में, ताकि वो यमराज जब आपकी प्राण लेकर जाना तो उसके पीछे पीछे जाकर लेकर अपने पति का प्राण लेकर आ जाए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि देखिए, अगर आपको सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो उसके लिए आपको डिमांड्स नहीं, अच्छी लड़की देखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर, क्योंकि हमेशा ना इंसान अच्छा होता है तो हर चीज हम खरीद सकते हैं।
11: हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर
0: करता है जिंदगी में। तो अभी ना हम
11: आगे बढ़ेंगे अपने शो में,
0: लेकिन एक पहले गाना तो सुन ले यार, बहुत बातें हमने कर ली है, एक म्यूजिकल ब्रेक होना भी जरूरी है, उसके बिना हमारे लाइफ अधूरी है म्यूजिक के बिना।
11: ये गाना सुनेंगे, सासू जी तूने
0: कदर न जानी।
11: ये गाना सुनने वाले श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत और हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और मेरे साथ में रीना जी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों माता पिता का दबाव, बेटी की शादी हर माता पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन जब सामने से लगातार मांगे आने लगती है तो ये खुशी चिंता में बदल सकती है। कई माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, लेकिन दोस्तों बेटी की शादी की खुशी उसके माता पिता की आर्थिक मजबूरी पर नहीं टिकी होनी चाहिए। माता पिता ने बेटी को प्यार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटी की विदाई मुस्कुराती हुई होनी चाहिए, कर्ज के बोझ के साथ नहीं।
1: ये तो बिल्कुल 100% तुमने सही कही है, कर्ज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से मिडिल क्लास फैमिली में कर्ज भी लेना पड़ता है यार, तो वो इसलिए लेना पड़ता है ना कि दहेज की मांगे होती है। जब दहेज की मांगे ही नहीं होंगी तो कर्ज भी मुझे लगता है कि नहीं लेना
0: पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, या आई एग्री विद यू रीना।
1: हाँ तो देखिए श्रोताओं, बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। बेटी कोई बोझ नहीं, हम अक्सर कहते हैं बेटी को अच्छे घर में भेजना है, लेकिन अच्छा घर आखिर किसे कहेंगे? वह घर जहाँ बहुत सम्मान हो या वह घर जहाँ बेटी को सम्मान मिले? मेरे हिसाब से अच्छा घर वही है जहाँ बेटी को अपनेपन का एहसास मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसे बराबरी का अधिकार मिले। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वह परिवार का हिस्सा है, एक इंसान है अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। इसीलिए उसकी शादी में सबसे जरूरी बात दहेज की ना करें, अच्छे रिश्ते की करें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लड़की की जिम्मेदारी दहेज प्रथा को खत्म करने की बात होती है। तो हम अक्सर सिर्फ लड़के वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे मजबूत शुरुआत खुद लड़का कर सकता है। अगर कोई लड़का शादी से पहले साफ कह दे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो ये बात बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि शादी में लड़की की आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपने परिवार से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन गलत मांग के सामने अपनी बात रखना भी जिम्मेदारी है। एक युवा की ऐसी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है। क्यों रीना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है कि लड़का डिमांड नहीं करता है, उसके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लड़का उसी वक्त अगर वहाँ एक्शन ले, अपने पेरेंट्स को बोले, तो चीजें संभल सकती हैं।
1: बिल्कुल संभल सकती है यार, और मुझे लगता है कि दहेज पर जो पैसे मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उस पर कितने दिन तक राज कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद फिर से वैसा ही। तो क्यों ना हम अपने बलबूते पर आगे बढ़े। जो भी सामान खरीदना है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचकर जो भी आप काम करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे भागती भागती आएगी। लेकिन मन में जब वही पाप भरा होगा तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती है वहां पर। इस चीज को जरूर सोचे। और मुझे ना ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब लड़कों की सुनी जा सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि उनकी बातें भी सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में शादी से पहले लगातार मांगे रखी जा रही हो तो लड़की और उसका परिवार उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है और इसमें आपकी सहमति, आपकी खुशी और आपका मान सबसे जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब रिश्ता तय हो गया है या लोग क्या कहेंगे, सही रिश्ता वही है जहाँ दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों की खुशी को महत्व दे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ता तय हो जाने के बाद ये कहा जाता है, बहुत से हमने न्यूज भी देखी है जहाँ पर बारात मतलब लड़की के घर पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस ले जाते हैं।
0: बारात वापस,
1: या फिर ये होता है कि बारात की पूरी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले से कॉल आता है कि इतने लाख पैसे अभी पहुँचाओ तब हम आएंगे आपके घर, वरना शादी कैंसिल। ऐसे भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसी बातें आती हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचिए जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या करिएगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि
0: जब आप शादी तय होती है वहां पर अच्छे से बातें हो जाना चाहिए, और जहां पर मांग हो, मुझे लगता है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि वहां शादी कैंसिल कर देना चाहिए।
2: मुझे लगता है रीना, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि
0: एक बात और, जितना पैसा हम दहेज में लगाते हैं अगर उतना ही पैसा बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि जब वो भी अपने पैर पर खड़ी रहेगी और लड़का भी अपने पैर पर खड़ा, वहाँ दहेज की बात ही नहीं आएगी।
2: हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही थी तुमसे कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि एक महंगा सामान कुछ समय बाद पुराना हो सकता है लेकिन शिक्षा जिंदगी भर साथ रहती है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए, उसे फैसले लेने का आत्मविश्वास दीजिए, उसे ये एहसास दिए कि शादी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी पूरी पहचान नहीं। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो दहेज जैसी सोच के खिलाफ उनकी आवाज भी मजबूत होगी।
0: ये तो बिल्कुल बात सही कही है तुमने। और एक और बात जो आज के समय में ना मतलब एक दूसरे को देखा देख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है दिखावे की शादी। आजकल
2: मैंने अगर 50 लाख की शादी की है तो यार मैं 60 लाख की शादी करूँगा।
0: हाँ, ये रहता है आज के टाइम में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज देखते हैं बड़ा वेन्यू, महंगे कपड़े, शानदार सजावट और लाखों का खर्चा। खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन जब दिखावे के लिए परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। शादी कुछ घंटों का समारोह है लेकिन वैवाहिक जीवन सालों का सफर, इसलिए शादी में दिखावा कम और समझदारी ज्यादा हो। आखिरकार जिंदगी की खूबसूरती वेडिंग डेकोरेशन से नहीं रिश्तों की समझदारी से बनती है।
2: दहेज और आत्मसम्मान, देखिए दोस्तों दहेज की मांग सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होती, कई बार ये परिवार के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। सोचिए कोई परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं रिश्ता ना टूट जाए। क्या ऐसा रिश्ता सच में मजबूत हो सकता है? रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर शुरुआत ही दबाव से हो तो आगे चलकर समझ और बराबरी कैसे आएगी? इसीलिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करना है। तो दोस्तों अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आएंगे और भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने लगे। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: और क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना फिर से आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है महिला मंच शो में। और अब बात करने वाले हैं कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात होता है, लोग कहेंगे, है ना। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत कुछ बदल देता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार इसी डर से परिवार ऐसी मांगे भी मान लेते हैं जिन्हें वे खुशी से नहीं मजबूरी से पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी आपको और आपकी बेटी को जीनी है, समाज को नहीं। कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला जिंदगी भर परेशानी बन जाए तो उसका असर परिवार को ही झेलना पड़ता है। इसलिए फैसले समाज के दबाव से नहीं, समझदारी और अपनी क्षमता को देख कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे पछतावा ना होए।
1: बराबरी का रिश्ता, रीना आजकल बराबरी बहुत देखते हैं लोग। अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन शादी का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? साथ। और साथ तभी खूबसूरत होता है जब उसमें बराबरी हो। और एक परिवार अपनी बेटी को प्यार और सम्मान के साथ रहा है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी है कि वह उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करे। शादी में किसी एक को छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं, दोनों परिवार बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों की खुशियां बराबर हैं। तो मुझे लगता है रीना कि दहेज की जगह अगर बराबरी आ जाए कितने ही रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं ना। अगर रिश्ते यहाँ पे एकता हो, है ना, कि देखिए वो लड़की भी मेरी मतलब इक्वल है और मैं भी, दोनों को एक समान देखा जाए। ये नहीं कि वो गरीब घर से आई है, मिडिल फैमिली से आई है, मैं रिच फैमिली से हूँ, तो उसकी वैल्यू कम करते हैं कि ये तो मिडिल फैमिली से लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, इसकी क्या रिस्पेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं, एक दूसरे से रिश्ता होता है, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट, बराबर सम्मान, प्यार देना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं आएगी किसी की भी जिंदगी में। कई बार दहेज की शुरुआत बहुत छोटी मांग से होती है, बस इतना ही और चाहिए, लेकिन यही छोटी सी मांग आगे चले बड़ी अपेक्षाओं का रूप ले सकती है। और जब परिवार एक मांग पूरी करता है तो अगली मांग के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं और अपनी सोच स्पष्ट रखना जरूरी है। शादी में उपहार देना अगर खुशी और अपनी इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन मांग और दबाव बिल्कुल अलग चीजें हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या उपहार भी दहेज होता है खुशी?
1: नहीं, दहेज और उपहार दोनों में डिफरेंस है। दहेज हम देने की इच्छा नहीं होती, दहेज जबरदस्ती दिया जाता है,
0: वो ना मांगा जाता है।
1: मांगा जाता है, लेकिन अगर बात करें उपहार की तो उपहार हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं,
0: अपनी बेटी के लिए देते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्टडी कर रही हैं, हर फील्ड में वो हर क्षेत्र में किसी कंधा मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। और आज की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा ये है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे ये भरोसा मिले कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आत्मनिर्भर बेटी सिर्फ अपनी जिंदगी मजबूत नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों के भविष्य में निवेश कीजिए, उनकी पढ़ाई, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में, यही असली संपत्ति है।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रिश्ते की असली कीमत, अगर कोई रिश्ता सिर्फ वह वजह से टूट जाए कि सामने वाला परिवार कार या पैसा नहीं दे सकता, तो शायद हमें उस रिश्ते की असली कीमत पर विचार

0: व्यवहार करना चाहिए। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं व्यवहार से तय होनी चाहिए। जीवन साथी ऐसा हो जो बीमारी में साथ दे, मुश्किल समय में साथ पकड़े और आपकी खुशियों में भी दिल से खुश हो। ऐसी चीजें किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए शादी में सबसे पहले इंसान देखिए, सम्मान नहीं देखा जाता है। श्रोताओं, देखिए सम्मान तो आप जितनी मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन जब उसमें प्यारी समझ नहीं होगा, एक दूसरे का साथी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी दहेज का? इस पे सोचिएगा जरूर आप। मैं आरजे रीना बोल रही हूँ आप सभी से, और मुझे मैसेज करके भी आपने बताना है, नंबर है 9837896896 पर, कि दहेज के प्रति आपका क्या राय है। क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी भी राय हमारे लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ तो लगेगा कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपका फीडबैक जब तक ना आए तो मजा नहीं आता। इतनी मेहनत करो तो थोड़ा बहुत फीडबैक बनता है। श्रोताओ जल्दी जल्दी मैसेज करिए, वेट कर रहे हैं हम आपके मैसेज का, देख लीजिए। अब आप
1: बेटियों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि शादी के बाद सबको खुश रखना है, उन्हें ये भी सिखाइए कि अपना सम्मान कैसे पाएं, और उन्हें ये भी बताइए और उन्हें अपनी बात कहना सिखाइए, अपने फैसले लेना सिखाइए और गलत बात को गलत कहना सिखाइए। साथ ही बेटों को भी सिखाइए कि पत्नी किसी के घर से आई हुई जिम्मेदारी नहीं बल्कि बराबरी की साथी है। अगर बेटियों और बेटों की परवरिश में सम्मान और बराबरी होगी तो आने वाली पीढ़ी की सोच अपने आप बदल जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी शादी जहां कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, दोनों परिवार की खुशी से मिलें, बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करें और माता पिता के चेहरे पर सिर्फ संतोष हो। ऐसी शादी शायद बहुत महंगी ना हो, लेकिन उसकी यादें बहुत कीमती होंगी। दहेज मुक्ति शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक संदेश है कि हम रिश्तों को सम्मान से ऊपर रखते हैं और हर परिवार अपने स्तर पर इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्यों रीना, कितनी अच्छी रहेगी ना ये शादी। हाँ। ना कोई दहेज
0: और क्या, मतलब दहेज ना हो, जहाँ वहीं पे पता क्या रिश्तों की समझ होती है ना, उस हाँ। जगह पे दहेज नहीं लिया जाता है। तो श्रोताओं हर चीज के बारे में हमने बात करी, लेकिन अब हम बात करते हैं बेटी की खुशी। बेटी की खुशी, बेटी की शादी में माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? यही कि उसकी बेटी खुश रहे। तो फिर उसकी खुशी को सम्मान और पैसे से क्यों जोड़े? बेटी के चेहरे की मुस्कान क्या किसी कार से बड़ी है? उसका सम्मान किसी गहने से ज्यादा कीमती है? उसका सुरक्षित और खुशहाल जीवन किसी बड़े समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बेटी की शादी में खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उनके आने वाले जीवन में उसे किसी चीज की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी, सम्मान या समझदारी, सम्मान देने वाले साथी, ये जरूर ध्यान दीजिए। तो श्रोताओं आज का जो मेरा ये सवाल है उन युवाओं, उन जेन जी से जो अब शादी करने जा रहे हैं, तो आप अपने होने वाले जीवन साथी से क्या चाहते हैं? प्यार, सम्मान, समझदारी, साथ। अगर यही आपकी जरूरतें हैं, फिर उसके परिवार से अतिरिक्त सम्मान की मांग क्यों? और अगर आप लड़की है तो क्या आप ऐसे रिश्ते को स्वीकार करेंगी जहां आपकी पहचान से ज्यादा आपके परिवार की आर्थिक क्षमता देखी जाए? बदलाव का सबसे अच्छा समय आज है और शुरुआत हमारी अपनी सोच से ही होती है और सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। श्रोताओं
1: बात करते हैं मायका और ससुराल की। तो शादी के बाद बेटी दो परिवार से जुड़ती है। मायका चाहता है कि बेटी खुश रहे और ससुराल चाहता है कि नई बहू परिवार का हिस्सा बने, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत तभी खूबसूरत होगी जब दोनों तरफ से सम्मान हो। मायके की आर्थिक क्षमता को बेटी के सम्मान से जोड़ना सही नहीं, और उन्हें और ससुराल को ये भी समझना चाहिए बहू अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, अपने सपने और भावनाएं भी लेकर आती है, उसे अपनाइए, उसकी कीमत मत लगाइए। और दोस्तों एक पिता की चिंता, एक पिता बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखता है, लेकिन अगर उन सपनों के बीच लगातार ये डर रहे कि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो खुशी अधूरी रह जाती है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां पिता बेटी को विदा करते समय ये ना सोचे कि मैंने कितना दिया, बल्कि ये महसूस करे कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास दिया है और अब वह एक नए परिवार में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी। यही सबसे बड़ी खुशी है। और दोस्तों शादी का असली उपहार क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि शादी में में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा विश्वास, क्योंकि गहने खो सकते हैं, सामान खराब हो सकता है, लेकिन विश्वास और सम्मान रिश्तों को जिंदगी भर संभाल सकते हैं। शादी में दोनों परिवार अगर एक दूसरे को सम्मान दें और बच्चों के फैसलों का साथ दें तो यही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए दहेज की सूची छोटी कीजिए और प्यार, विश्वास और समझदारी की सूची लंबी कीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति। हम मिलेंगे आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। और हाँ, हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, अब वो आपकी च्वाइस है। धन्यवाद। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:10 हो चुके हैं और आप आर्चरीना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फरमाइश शो में, जहां पर आप सभी के फरमाइश वाले गाने प्ले किए जाते हैं श्रोताओं। और आज का टेम्परेचर यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस टाइम मुरादाबाद का, कि कभी धूप और कभी बादलों के साथ साथ भाई हवा तो हल्की फुल्की है, मतलब नाम मात्र कह सकते हैं। तो इस बीच आपने क्या करना है जी, हमें कॉल करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने फरमाइश वाला गाना सुने तो कॉल करिए, नंबर है 9823789698 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। और साथ ही साथ 3:10 हो चुके श्रोताओं, और मुरादाबाद में ये कहा जा रहा है कि 3 बजे से जो भी बड़े बड़े वाहन हैं उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आप निकल रहे हैं तो लोकेशन देखकर निकलिएगा, क्योंकि इस टाइम से लेकर यानी कि कांवड़ियों के लिए सोमवार तक उनकी सुरक्षा में ही, मतलब बड़े जो वाहन हैं वो नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखिए। और साथ ही साथ क्योंकि कल संडे है और संडे को हमारा फरमाइश शो नहीं आता है, तो आप ही आज अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो उसके लिए तो देखिए आपको कष्ट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, यानी कि हमें कॉल करना पड़ेगा और तब जाकर आप अपना गाना सुन सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर आपको भी याद है, 9837896896 पर कॉल करके आप अपना गाना सुन सकते हैं। फिलहाल मेरी पसंद का एक गाना सुनवाती हूँ आपको।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओं। फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 3:16 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कल संडे है। और मतलब आप ये शो और भी हैंडल करने वाले हैं, लेकिन उनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, गैस करना पड़ेगा। जो रात को आते हैं, रात के 9 बजे, दिल की बात दिल तक करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन आने वाले हैं हमारे बीच में। तो आप समझ गए होते हो भैया, कॉल कर लीजिए आराम से सांस लेकर। लेकिन लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि जिन्होंने यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे यानी कि कॉल कर दिया है, तो कृपया करके वो कॉल ना करें। और भी नए लिसनर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। फिलहाल अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं।
1: जी, मैं अल्लाह करम मैं ठीक हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सर। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं आसिम अली, मुरादाबाद।
0: ओके, तो बताइए सर, मतलब करते क्या हैं आप?
1: मैं एयरपोर्ट के पास
0: तो बताइए जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: आज की टू मूवी का जो सॉन्ग है वो सुनवा दीजिए आज। हम
0: ठीक है, ठीक है जी। किसी का नाम मेंशन करना चाहेंगे?
1: नहीं, किसी का नहीं, कोई है ही नहीं जिसका नाम मेंशन कर सके।
0: अरे सर, खुद खुद के लिए
1: नहीं,
0: मतलब खुद के लिए भी गाना नहीं सुनेंगे आप?
1: कंटिन्यू सुन रहा हूँ ना।
0: तो वही तो बोला ना मैंने कि खुद के लिए।
1: जी,
0: चलिए मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: ओके।
0: तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं। तो फिर आओ, यानी कि तो फिर आओ का मतलब ये है कि आप हमें कॉल करिए। नंबर है 9823789689 पर कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। नंबर है 9833789689 पर कॉल करिए। समय की बात करूँ तो 3:00 यानी कि 18 मिनट हो चुके हैं। और अगर आप हाईवे की तरफ से सोच रहे हैं आने के लिए, 0 पॉइंट की तरफ से, तो जरा लोकेशन सर्च कर लीजिएगा क्योंकि कांवड़ियों की वजह से यात्रा यानी कि जो बड़ी बड़ी वाहनें हैं वो बंद कर दिया गया है। तो इस चीज का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल हम गाना सुनते हैं।

0: चलो जी, तुम फिर यानी कि जो आपने गाना आशिकी 2 मूवी से गाना सुना है, श्रोताओं आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं और आरजे रीना के साथ कनेक्टेड। समय की बात करूं यानी कि फरमाइश शो में, तो 3:22 हो चुके हैं और मौसम भी बहुत ही औसम है, लेकिन उमस वाली गर्मी है। क्यों अखिल भैया, बाहर से आए हो, क्या कहना चाहोगे? आखिरकार मैंने इनका नाम रिवील कर ही दिया, मतलब मेरे पेट में पानी नहीं बसता गाइस, सच बताऊं तो। मतलब मैं क्वेश्चन भी जब पूछती हूँ ना आप सभी से, कभी कभी तो आंसर भी स्लिप हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा घाटा नहीं होता है।
1: उमस इसलिए हो रही है क्योंकि अभी बारिश हुई थी, फिर रुक गई, फिर होती है, फिर रुक रही, मतलब रुक रुक के हो रही, जगह जगह पे नहीं हो रही।
0: मतलब मौसम खराब है कह सकते हैं,
1: मौसम ऐसा है कि भाई साहब कोई ना कोई तो छींक ही रहा होगा 100%।
0: मैं ही खुद ही हूँ, फर्स्ट नंबर पे मैं हूँ। तो अभी भी मैंने चाय तो नहीं पिया, मैंने
1: चाय नहीं पी है तुमने?
0: नहीं नहीं,
1: यार
0: नहीं,
1: चाय
0: नहीं।
1: बनाओ ना एक बढ़िया सी।
0: आए हाय गाइस, आप चाय भिजवा दीजिए।
1: कहेंगे भाई साहब बहुत बढ़िया, मतलब गाना भी सुने और चाय भी पिलाए।
0: अरे क्या बात है, गाना तो हम सुना रहे, आप चाय, कब चाय भिजवा दीजिए। केतली में भिजवाइएगा, वो ठंडा हो जाएगा वरना। है ना,
1: बिल्कुल सही।
0: चलो फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो
2: जी मैम।
0: जी सर, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून
2: मैम, मेरा नाम है गुलाम जलानी पाशा कुंदरकी से
0: जी।
2: आपसे मुखातिब हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, क्या करते हैं आप?
2: मैम मैं जर्नल स्टोर है।
0: अच्छा, जर्नल स्टोर है आपका
2: जी।
0: ओके, तो बताइए आप आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैम गा के बतला दूं आपकी इजाजत हो तो?
0: अरे वो तो मैं ही खुद ही कहने वाली थी, क्योंकि आप गुनगुनाते बहुत ज्यादा है। चलिए आप वॉइस मैसेज भी भेजते हैं तो गाना गुनगुनाते हैं आप।
2: जी मैम, मिक्स मोशी का वो गाना, तेरा मेरा है प्यार अमर, ये वाला गाना,
0: बस इतना ही गुनगुनाना था।
2: सो रहे हो ना मैं?
0: अच्छा सो रहे हैं, तो आपने बोला कि हम गुनगुनाएं, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा खासा गा लेंगे आप।
2: हाँ तो मैम मैंने गुनगुना तो दिया आपको।
0: ये सर तो ये तो इतना तो मैं ही गा सकती हूँ, तेरा मेरा प्यार है अमर। चलिए हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, फिलहाल आप
1: बारिश की तरह ही हैं।
2: मैम
0: कहाँ पे आना
2: मैम? हम
0: जी, आप लग रहा है कि नेटवर्क खत्म हो गई, आप बुलाना नहीं चाहते दिल से?
1: जनरल स्टोर पे बुलाने को कह रहे हैं।
0: हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं, आप जिस दिन दिल से बुलाएंगे हम आ जाएंगे।
2: आपको?
0: अरे बिल्कुल आ रही है सर, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, बताइए। कोई बात नहीं सर, हम आपसे करते हैं बात, ठीक है। चलिए श्रोताओं, फिलहाल हम गाना सुनते हैं, तेरा मेरा प्यार है अमर, अमर ही प्यार है, इसलिए आप सभी का जो प्यार है खींचा हुआ आ जाता है हमारे पास, पकड़ के नहीं लाना पड़ता है, उसके लिए बस आपको कॉल करना पड़ता है, नंबर है 9837896896। चलिए देखते हैं किसका प्यार है।

0: getting easier to spot. Emails, LinkedIn posts,
1: hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओ। फरमाइश शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। अखिल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि फरमाइश शो में। इनको अब इनका भी ना मन नहीं लगता है, ये बोले कि चलो मेरा मन नहीं लग रहा तो स्टूडियो आ जाता हूँ, भले इनको जुकाम हो गया आज।
1: मैं निकला था, मैं ये सोच के निकला था कि बिल्कुल सूखा सूखा जाऊंगा, क्योंकि कांवड़ियों की वजह से पूरा इधर से ना कांठ रोड और दिल्ली रोड और इवन रामपुर रोड तीनों तरफ डाइवर्जन कर जा।
0: पता है आपने पहले डिसाइड कर लिया था ना कि सूखा सूखा जाऊंगा, तो भगवान शिव जी ने कहा कि बेटा ऐसा तो होने नहीं दूंगा मैं। सूखा सूखा तो तुझे भेजूंगा नहीं। जब मेरे भक्त भीग रहे तो तू भीग साथ में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, भीगने का मजा तो देखो आनंद बहुत है।
0: सावन के महीने में बूंद, हाँ
1: हर कोई चाहता है भीगना
0: जी, बिल्कुल,
1: चाहे गाड़ी के अंदर बैठा हो या बाहर।
0: मतलब एक थोड़ी बहुत फुहारे हो जानी चाहिए, लेकिन ये पूरे गीले हो गए जनाब जी। और फिलहाल
1: छीके भयंकर भयंकर छीके आई,
0: भयंकर वाली छीके कैसी होती है,
1: मतलब जब
0: डर जाए इंसान
1: छीको, छीकने के बाद ये पता नहीं चले कि तुमने छीका किस तरफ है।
0: लेकिन ये गलत बात है श्रोताओं, जब भी आपको जुखाम खांसी होती है, आप छींक रहे हैं, तो अपने मुंह पर हैंकी वगैरह कुछ जरूर रखिए, ताकि आपके जो आसपास में है वो इस संपर्क में ना आए। कहते हैं जुखाम जो ये होती है ना, जुखाम खांसी, ये एक दूसरे के छींकने से, यानी कि जो हवा होती है मुंह के जाने से, वो मतलब जुखाम हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हमेशा अपने मुंह पर हैंकी रख के आपने छींकना है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, अभी कोई श्रोता लग रहे हैं कि वो सो रहे हैं अभी। उनको नींद आ रही है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक गाना आपको सुनवाते हैं। मतलब ये गाना बोले तो मेरा फेवरेट से भी फेवरेट वाला गाना है, और तो इस गाने को सुनवाऊंगी, लेकिन आप कॉल जरूर करिएगा अगर आप गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल संडे है और आप सोचेंगे कि ओहो संडे को भी हमारा गाना प्ले हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।
2: मैंने भी आधा गीत सुना दूं।
0: सुनाओ।

0: क्या बात है जी, ऐसे ऐसे गाने मिल जाए सुनने को तो मजा ही आ जाता है जी। तुसी की हाल चाल हो? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। सत श्री अकाल जी। राधे राधे। आरजोरीना और अखिल जी के साथ कनेक्ट है फरमाइशों में। आरजोरीना के साथ समय की बात करूं तो 3:36 हो चुके हैं। नहीं नहीं एक्चुअली बताना पड़ता है ना हमारे श्रोताओं को भी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन तो पॉकेट में रखे रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं तो मगन हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको अपडेट देती रहती हूँ कि टाइम का भी।
1: सब्जी मंगाई थी घर पे, जल्दी पहुंच जाओ, पता चला घूमते रह गए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमारे कभी कभी होता है।
0: हाँ, हमारे श्रोता कनेक्ट है, उनसे बात कर लेते हैं।
1: चलिए बात करते हैं। हेलो फरमाइश सर, क्या नाम है आपका?
2: हेलो सर, संजय चौहान बोल रहा था, आपकी बात सुन रहा हूँ, आ रही है।
1: संजय जी, ऐसा आपके साथ हुआ है कभी जैसे आप बाहर निकले जी, घर से ऑर्डर था सब्जी लेके आने का, कोई यार दोस्त मिल गया आपको और आप बातों बातों में भूल गए कि भाई साहब लौकी लेके जानी थी, यहाँ तो तुरई बन गए हम?
2: ये हमारे साथ हुआ अभी।
1: कैसे?
2: मेरे साथ भी हुआ है।
0: सबके साथ होता है सर ये तो।
1: हाँ
2: हाँ, जाना पड़ेगा मुझे, टमाटर भूल गया, सारी सब्जी ले आया।
1: तो सर आप भी टमाटर होते हो तो बचे होंगे घर पे, फिर तो
2: जाना पड़ेगा ना।
1: हाँ तो वो तो टमाटर जैसा तो लाल होना पड़ेगा सर,
2: लाने पड़ेंगे नहीं तो
0: खाना नहीं मिलेगा।
1: देखा साहब, नाम तो हर जगह ऐसा, कहीं ये बात कहते थे कि आप एक को ढूंढो तो कोने में दूसरा मिल ही जाता है।
2: क्या करें, ढूंढना पड़ जाता
1: है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज कौन सा गाना आपकी फरमाइश है? जब
2: मैंने आपको बताया था काली टोपी लाल रुमाल, पुरानी मूवी है ब्लैक एंड व्हाइट, उसका गाना है लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए
1: जरूर जरूर। ये काली टोपी लाल रुमाल
0: नहीं सर, देखो जिया भी नहीं जाने देंगे, गाना भी सुना देंगे।
1: काली टोपी जो आपने पहनी है कभी लाल रुमाल के साथ? वैसे
2: मैंने पहने नहीं है, लेकिन ये मूवी मैंने पूरी देखी है सर।
1: अच्छा, मूवी पसंद आपकी पसंदीदा मूवी में? सही,
0: सदाबहार गाने है ना सर, ओल्ड टाइम फेवरेट।
1: बिल्कुल, उसमें सजना जी मिल लिए थे आके। बहुत ही बढ़िया, जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात।
0: मुझे तो लगा सर बधाई की से आप बधाई कुछ और बात की दे रहे हैं।
1: ओके सर, ओके। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जो इस मौसम में कह रहे थे कि साहब मैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं लेने गया था टमाटर और टमाटर ही लेना भूल गया। ऐसा हुआ है आपके साथ रीना जी? आपके साथ भी हुआ है, नहीं हुआ है कभी?
0: मेरे साथ तो होता भी है ना, तो मैं दोबारा नहीं जाती हूँ।
1: क्या सब्जी वाले के पास?
0: यस, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ ना, तो डांटेगा कौन। मैं खुद का गुस्सा खुद पे निकाल लेती हूँ।
1: तो इसका मतलब उस दिन आप फिर मैगी बना के काम चलाती होंगी?
0: मैगी बहुत कम खाती हूँ मैं, मतलब बाहर की जो जंक फूडें होती हैं वो रेयरी मंथ में, मतलब एक दो बार मैं खा लेती हूँ।
1: ऐसी बातें मत कहिए, वरना पता चला आज जो मैगी बना रहा है अभी खा रहा होगा वो रुक जाएगा खाते।
0: नहीं, अब देखिए किसी को हम खाने के लिए मना नहीं कर सकते, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ भी खा सकता है इंसान, लेकिन जंक फूड बहुत कम। जंक फूड नहीं खाना है आपने, बाकी आप घर की बनी हुई चीजें विदाउट ऑयली वाला खाना खाइए, क्योंकि आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। क्योंकि देखिए विदाउट ऑयली वाला मैं इसलिए बोल रही हूँ, जंक फूड इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि पहले जैसा काम रहा नहीं है, हम इतना मेहनत नहीं करते हैं, घर पर ही बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं और वो पूरा फैट के थ्रू ना निकल जाता है वो बॉडी से इधर उधर, फिर हम मोटे हो जाते हैं।
1: अभी तो आप जो भी खा रहे हैं खाएं, एंजॉय करें, बिल्कुल बातों पर ध्यान देते हैं। और ये गाना सुने जो रीना जी से प्ले करने वाली हैं संजय जी की चॉइस पर,
0: रेट्रोज गाना सुनना चाहते हैं श्रोताओं, सदाबहार गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओ। फरमाइशों में आज जरीना के साथ अखिल जी मेरे साथ है, और समय की बात करूं तो 3:46 हो चुके हैं। और देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि देखिए, सदाबहार गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत प्यारी नींद आ जाती है, लेकिन उस नींद में भी आपको एंजॉय करना है कि हाँ मैं गाने सुन रहा हूँ, गाने सुन रही हूँ और मुझे बहुत प्यारी प्यारी नींद आ रही है।
6: ऐसे होता है, और इस बीच पीछे से आवाज आती है, अरे मम्मी खिचड़ी नहीं आई।
5: खिचड़ी?
6: अरे बेटा भी बनाती हूँ तेरी खिचड़ी।
5: खिचड़ी के नाम पर समोसे मिल जाए तो मजा आ जाता है। नहीं, समोसे छोड़ी, बस चाय मिल जाए।
6: अभी तो देखिए, जो हमें जंक फूड पे हमें लेक्चर दे दिया था, इतना सारा लेक्चर, जो बेचारा मैगी खाते खाते रुक गया, इधर उधर देखने लगा कि ये रीना जी को कैसे पता चला कि मैं मैगी खा रहा हूँ।
5: नहीं, मैगी नहीं खा रहे गाइस, ये बोल रही है, ये पता क्या खा रहे, इतने चटोरे पिज्जा खा रहे हैं बैठे बैठे, आपको नहीं बोल रहे कि आइए गाइस खा लीजिए, देख लीजिए मैंने आपको बता दिया है, मर्जी आपकी, आ सकते हैं आप।
6: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये होम मेड पिज्जा है तो आपको ही पता होगा, ये सब्जियां काट के बस ऐसे ही रख देते हैं।
5: नहीं मतलब घर पे ऐसा कभी हुआ आपसे कि भाभी ने बोला हो कि चलो तुम्हारा सब्जी काटो?
6: हाँ हुआ है, ऐसा हुआ।
5: तो सच में आपने बनाया खाना?
6: उन्होंने कह दिया तुम छोड़ ही दो वरना 2 दिन बाद खाना मिलेगा लोगों को।
5: चलो
6: हम पीछे नहीं है हर काम में, बस ये है कि थोड़ा बहुत हो जाता आगे
5: पर कर लेते हैं। चलिए फिलहाल हमने श्रोता से बात कर लेते हैं, पता चले वो हम तो सब्जी काटे ना काटे वो काटने लग जाएंगे।
6: हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और जरा हवा बहुत आ रही है आपके आसपास। हाँ, अरे सर पंखे कम करा दीजिए, बस औरों को दिक्कत ना हो आपके पंखे कम कराने से। हाँ आवाज सही आ रही है सर, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, तो आवाज और तेज निकलनी चाहिए ना, आपकी आवाज दम दम सी गई इसलिए हमने पूछा।
5: शादी के बाद अक्सर आवाजें दब जाती हैं।
6: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? अरे अब पता चला आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। चलिए साहब, क्यों नहीं ये गाना भी प्ले होता है मस्त निगाहों से। कोई एक आध शायर बोलना चाहेंगे कुछ, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे? अरे साहब ये तो कोई बात नहीं, उनका नाम ले लीजिए आज उनका, वो भी कहेंगे लो जी साहब सबको पता चल गया भाई साहब कौन सा दोस्त है जो बात नहीं कर रहा। सही है साहब, बिल्कुल बढ़िया, एक तीर से दो शिकार कर दिया आज आपने। चलिए सर, अरे सर कितनी बारिश कराओगे, हमें छींक तो आप दिख नहीं रहे, हम इतना छींकने मतलब चाहते हैं कि छींकते रहे हम। हाँ सर कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी भी होती है ना तो अगल बगल में तालाब बन जाता है। हाँ तो हमें तो सर इतनी काफी है सर। ओके जी,
5: तो
6: आप बोलिए बोलिए, आप आप कुछ कह रही थी, आपके मन की कोई बात निकलते निकलते रह गई है।
5: नहीं नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि चलिए श्रोताओं ये गाना एंजॉय करते हैं, और आप भी कॉल करते रहिए और अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, क्योंकि जब अच्छा गाना सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा।
6: बिल्कुल सही, आपको भी मजा आएगा और
5: हम भी यहाँ एंजॉय करते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। आप भी डांस जरूर करिएगा
6: आपकी।
5: चलिए श्रोताओं फिर हम गाना सुनते हैं। समय की बात करूँ तो 3:50 हो चुके हैं।

0: चाहिए जनाब, कुछ सलाम दुआ हो जाए।
1: शहंशाह हो के मलिका हो,

0: जो कहना है कहो खुल के। मैंने कहा जो कहना है कहो खुल के, बहाने क्यों बनाते हो, हसीनों की गली में तुम भी अपना सर झुकाते हो।
1: सर जिस पे ना झुक जाए। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।
2: ब्लूप्रिंट का क्या करोगे?

0: सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: जी हेलो
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? गुड आफ्टरनून।
1: मैडम, नमस्कार
0: नमस्कार जी, कैसे हैं?
1: जी। बढ़िया है मैडम, आपका प्रोग्राम सुनना है और भी अच्छे हो गए।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से अतीक अहमद सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ मैडम। फिल्म
0: जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: का नाम है निगाहें और गाने के बोल है सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी घर वापस आए।
0: ओके, वैसे आप घर से बाहर रहते हैं,
1: जी घर से बाहर ही है हम।
0: तभी आपने ये गाना सुना है? हाँ
1: जी सावन का जो है लास्ट हफ्ते का लाई। जी
0: जी जी बिल्कुल। तो चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? हाँ
1: तो सुनने वालों का नाम तो है कुछ,
0: हाँ बिल्कुल, दो नाम लीजिएगा।
1: बड़े भाई का तौफीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानी सिद्दीकी।
0: चलिए जी, इन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं और श्रोताओं के साथ भी, ठीक है?
1: ठीक है मैडम, नमस्कार।
0: ओके जी, नमस्कार। चलिए दी गाना सुनते हैं, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में, आनंद बख्शी जी की आवाज़ में, बहुत ही शानदार वाला गाना। और इस मूवी में यानी कि श्रीदेवी, सनी देओल, आय हाय, इनकी अदाएं भाई क्या ही कह सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, फरमाइश शो में। क्योंकि समय की बात करूं तो देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 4:04 आज की तारीख 22 अगस्त। और भैया बच्चों के ना बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि आज से लेकर यानी कि मंडे तक 24 तारीख तक बच्चों की जो छुट्टियां हैं, तो आप क्या करें, घर बैठे बैठे हमें कॉल करिए, नंबर है 9837896896। और साथ ही साथ होमवर्क भी अपने पूरा करने, ठीक है जी। अखिल भैया पता नहीं कहाँ चले गए, उनको बुला कर लाती हूँ मैं। अरे यही है आप, सो गए थे क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं छींकों से इतना
3: परेशान हो गए थे, नहीं नहीं गाइज मैं बताती हूँ, छींक रहे, साथ साथ इनको गर्मी लग रही, तो कभी एसी में जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं।

0: हमजा लेना है तो रीना जी ऐसी ही होना होगा।
1: ये तो है। तो चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
2: हाँ जी।
1: हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते।
2: नाम है जावेद।
1: जी जावेद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या बोला आपने?
0: मैं आरटीओ ऑफिस में।
1: अच्छा अच्छा।
0: जावेद जी, आपका लाइसेंस तो बना हुआ होगा ना? आपका तो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं?
2: सब कुछ है।
1: देख लीजिए सर, चेकिंग के लिए आ जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? एक और चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए, सर, सीट बेल्ट हेलमेट कहाँ गया? अच्छा नहीं, इन्होंने लाइसेंस की बात करी, हमने गाड़ी की बात कर ली। अरे मतलब आपको आंसर बता देना चाहिए सर कि जब भी गाड़ी चलाते हो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनना होता है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, आपको गाड़ी नहीं आती तो सीख लीजिएगा। फिलहाल गाना बताइए। कौन सा
2: गाना?
0: ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या बात है, आपने तो मतलब आज बारिश हो गई तो आप ऐसी बातें करो।
1: लेकिन हर काम काम की होती है सर।
0: जरूर जरूर।
1: चलिए चलिए सर, जस्ट किडिंग सर, वो तो हमारा काम है, मजाक करते रहते हैं। छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती है। फिलहाल हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके। कृपया करके श्रोताओ, बुरा ना माने, सावन का महीना है। चलिए गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, यानी कि ओल्ड गाने सच बताओ तो बड़े ही शानदार होते हैं। और बहुत से भैया मतलब ऐसा होता है कि ओल्ड वाले गाने हैं जितने आप सुनो मन नहीं भरता है ना।
1: बिल्कुल सही कही आपने।
0: अच्छा आप कितनी बार सुनते हो?
1: बहुत ही को रिलेटेड होते हैं आपकी लाइफ से।
0: आप कितनी बार सुनते हो ये बताओ?
1: मैं तो जब भी मेरे को कोई भी ओल्ड गाना सुनाई देता है मैं तो पूरा ही सुनता हूँ।
0: सिग्नल चेंज नहीं करते आप?
1: हाँ, मैं नहीं चेंज करता सिग्नल।
0: सिग्नल बिल्कुल चेंज नहीं करते?
1: सिग्नल कभी कभी करते।
0: आप जब सफर में होते हैं तो सिग्नल चेंज नहीं करते?
1: मैं सिग्नल तो चेंज करता हूँ, कभी ग्रीन कभी रेड कभी ऑरेंज।
0: देखा गाइस, समझ तो गए पर देर से समझे ये। फिलहाल गुड वाली इवनिंग है जी। फरमाइश शो में समय की बात करूँ तो 4:14 हो चुके हैं और अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। देखिए जरा कौन कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ।
1: हेलो हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए सभी को।
2: अरे सर जी, हम ये पता ना कहाँ चलेंगे, खाना खाने चलेंगे, इतना होल्ड करवा।
0: ना एक बात बताइए सर, अब जिनका गाना आता है वो पूरा तो हमें प्ले करना होता है ना, वरना भैया बोलते हैं मैडम हमारा गाना नहीं प्ले किया आपने पूरा।
1: अभी आपसे पहले जो लिसनर थे उनको हमने पूरा गाना सुनाया ना, इस चक्कर में लेट हो गए। आप कहाँ पर हैं इस समय?
2: अभी मैं फरुखाबाद हूँ।
1: फरुखाबाद में कैसा मौसम है?
0: तो हम भी बाहर से फरुखा खा के ही आए सर।
1: है सर,
2: मौसम बढ़िया है सर जी।
1: मौसम बढ़िया है?
2: मौसम बढ़िया है, फरुखाबाद से बात कर रहा हूँ। और बारिश वगैरह हो रही थी तो मैंने की चलो आज रामपुर में, रामपुर के मुरादाबाद से फोन लगाया जाए। फोन लगाया उन्होंने की सर जी पता ना फोन धर के कहाँ चले गए, हम बातें कर रहे हैं अपनी अपनी की बातें बहुत कर रहे।
1: कहाँ आप किससे, पड़ोसी से बात कर रहे थे?
2: नहीं, मेरी भांजी थी वहाँ, कही थप्पड़ी कच्ची कच्ची बाने थप्पड़ी दे रही, पकी पकी नहीं, पकी कीड़ा नहीं करते। 20 रुपया किलो थप्पड़ी, 30 रुपया दे रहे थे, थप्पड़ी वाले लूट देंगे।
1: तो आपने 10 रुपए का फायदा करा है, नुकसान किया है?
2: अरे सर जी, फायदा का 30 रुपया, 30 रुपया लाए।
1: चलिए चलिए कोई बात नहीं, अब आराम से बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किया, ये कौन सी किया की बात कर रहे हो आप? ये वो वाली किया जो गाड़ी चल रही किया या दूसरी किया?
2: अरे कीड़े कीड़े थप्पड़ी में लिखते
1: हैं कीड़े। चलिए साहब, आप ऐसी बातें करोगे तो ना खाना जो बेचारे खाना खा रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे खाना खाना। आप बताइए कौन सा गाना इस समय सुनना चाहते हैं?
2: रीना मैडम जी, रीना मैडम जी कहाँ गई?
1: रीना मैडम जी पहले आप गाना
0: की बातें सुन रहे हैं सर।
1: रीना मैडम जी जो है आपकी पसंद का गाना गैस कर रही है, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: तो सर जी भाई सुनवा दीजिए, आई विल की रात का सावन का महीना है, घटा से बताया भाई कि आपको जितने मुरादाबाद को और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सबको रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सबकी तरफ से आपको भी खूब सारी शुभकामनाएं।
2: रीना मैडम से मैं राखी बनवाऊंगा तो रीना मैडम को ₹1 का गिफ्ट दूंगा।
1: ₹1 का
0: सर मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आइए आपको मैं राखी 10 राखी बांध देती हूँ।
1: हाँ, आपको 10 रुपए वाली राखी बांध देंगी वो।
0: नहीं सर, मैं आपको 10 लाख की राखी बांध दूंगी, बदले में 1 रुपए ले लूंगी।
1: चलिए चलिए आप आइएगा, मोस्ट वेलकम है, जब आप आए तो जरूर राखी
0: लेके आइएगा साथ में। हाँ,
1: राखी भी अपनी पसंद की लेके आइएगा।
0: बिल्कुल आ जाइएगा सर राखी बनवाने के लिए।
1: सतीश जी आप काम क्या करते हैं पहले ये बताइए आप?
2: मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ।
1: तभी आपने इतनी सारी बातें।
0: अच्छा सर चलिए, अपने सब खेतों में क्या बो रखा है इस टाइम?
2: अभी तो मैडम जी वैसे खेतों में धान लगे हुए हैं, इस मौसम में बारिश के मौसम तो जानती हो, अभी तो जैसे बारिश के मौसम में पकौड़ी सुबह नाश्ता, पकौड़ी है, कचौड़ी है, और ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: अच्छा चलिए सर, आपने बोला कि राखी में 1 रुपया देंगे, लेकिन 1 रुपया मत दीजिएगा, चावल जब निकल जाए चावल ले आइएगा।
1: जब आप खेती करें तो चावल ले आइएगा।
2: अरे मैडम जी ऐसी बात नहीं, चावल तो मैं एक ना
0: 10 क्विंटल लाकर रख देना सर, तो हमारे ऑफिस
2: तो
0: में बहुत है।
2: लेकिन ऐसी बात नहीं, तो हम तो इसे कह रहे थे 1 रुपए देंगे, अब बताओ अब आपको राखी बनवाएंगे तो 1 रुपया का खा दोगी?
0: अरे नहीं नहीं सर, हम तो मजाक
1: तो
0: कर रहे हैं,
1: मजाक की बात
0: प्यार होता है सर, ये आखी वाला
2: मेरी बात में इतना कोई मोल नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही बात कही, मोल नहीं होता है, तभी आपने एकदम एक रुपए वाली बात कह दी। आपको भी बात जो है, जब आपने शुरू करी तो जब आपको पता है जब किसी चीज का मोल नहीं है तो हम उससे लेके क्यों बातें करें।
0: हाँ, और सर ये तो प्यार होता है भाई बहन का, एक अच्छा प्यार होता है। जी
1: हमने भी ऐसे कहा
0: सर,
1: मजाक मजाक में हमारी भी छोटी बहन।
0: सर टेंशन मत लीजिए, कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जी बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: सर हंसी मजाक होती रहनी चाहिए।
2: मैं आपसे आपने बिलों मुझे मुरादाबाद से हम करते हो कि कहीं हरियाणा से अलग हूँ, ट्रैक्स रहती हूँ।
0: बढ़िया नाम लिया था सर आपने।
1: आप गैस गैस करके बताइए।
2: नहीं जैसे कहा जा कह रहे जी, आप जो खास मुरादाबाद में रहती हो, हरियाणा से रहती हूँ, अभी कहीं ड्यूटी करती हूँ।
1: ये हरियाणा से ड्यूटी करती है सर।
2: अच्छा,
1: मुरादाबाद कभी कभी घूमने आ जाती हैं, तो जब भी आती हैं हम इन्हें पकड़ लेते, मतलब कह देते हैं कि चलो आज शो कर दो आप। वो ट्रेन गुस्से में बैठ गई थी हरियाणा, कहीं थी जब तक वंदे भारत नहीं चलेगी मुरादाबाद तक मैं नहीं जाऊंगी। हमने कहा चलेंगे मोदी जी से बात करेंगे।
0: चलिए जी, हम
2: मेरी बात सुनो, मैं आपका इंतजार कर रहे थे, आप लोग आओगे। छत्तीसगढ़ में छोटा सम्मेलन था बहुत।

0: बढ़िया स्वतंत्र सम्मेलन था, तो वह आप आ जाते तो बहुत अच्छा लगता। बाहु पे बहुत लोग हर के उत्तर प्रदेश के आरजे बहुत लोग आए थे।
1: अरे अरे सर सुनिए,
2: हमें
1: पटरी
2: पता नहीं
1: पर है
2: था।
1: ना ट्रेन आ गई है, अब हम गाना सुनवा
0: अभी
1: देते
0: तो
1: हैं
0: अभी
1: आपको,
0: तो
1: ठीक है?
0: अभी तो कल से लौट के आए थे छत्तीसगढ़ में।
2: अच्छा,
0: बहुत भारी स्वतंत्र सम्मेलन था।
2: मगर जब भी आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे।
0: उत्तर प्रदेश के बहुत लोग आए, मुरादाबाद से आए थे काफी लोग।
2: अच्छा सर, चलिए कोई नहीं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अभी तो आपकी फरमाइश पूरी करते हैं हम।
0: आपने सुना हो बागपत में हुआ था, मैं जो संजय ढिंगिया ने करवाया था।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो बहुत भारी हुआ था, उससे भारी हुआ था।
2: चलिए मैं करता हूँ आपसे खूब सारी बातें अलग से कॉल करके, तभी अभी आपके लिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।
0: जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: चलिए जी, सावन का महीना यानी कि आई मिलन की रात से ये गाना सुनते हैं।

0: Well done on that, Isa.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:28 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। सावन का महीना यानी कि लास्ट वीक चल रहा है सावन का, उसके बाद भी बरसात तो शुरू जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करेंगे। अरे अखिल भैया सो गए क्या?
7: नहीं, मैं अभी सर मैडम।
6: अच्छा
7: हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
8: जी सर जी, जय श्री महाकाल।
6: जय श्री महाकाल, नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
8: सर जी सेवा लोहा टाइम पे विदिशा से।
7: विदिशा से बोल रहे हैं आप?
8: जी सर।
7: विदिशा तो बहुत अच्छी जगह, सुंदर जगह।
8: जी बिल्कुल सर, काशी का स्तूप बहुत मशहूर है हमारे राज सिंह जिले का।
7: हाँ जी हाँ जी, हम जा चुके हैं, घूम चुके हैं विदिशा। तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी, मौसम कैसा हो रहा है उस समय, पहले तो ये बताइए उधर का।
8: सर जी मौसम देखिए, 4-5 दिन हो गए हैं, मतलब सुबह से बादल रहते हैं पर बरसते नहीं है।
6: जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है सर।
8: हाँ जी बिल्कुल,
7: तो आप ही बरस जाइए सर। आप ही बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
8: सर जी एक मूवी रहेगी हम तुम्हारे सनम, और उसमें बहुत खूबसूरत सा गाना है नारायण जी की आवाज में, तारों का चमकता कहना हो।
7: जरूर जरूर जरूर, ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
8: ये मेरी 3 सिस्टर हैं सर, तीनों को डेडिकेट करूंगा, तनुजा रंजीता संगीता।
7: चलिए
6: सर, सर नाम भी बहुत बढ़िया है, तनुजा
8: रंजीता संगीता, पुरानी हीरोइनों के नाम है तीनों।
6: हीरे
7: आपका भी पुराने हीरो वाला ही नाम है शिवा। चलिए साहब जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।
6: चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं हम तुम्हारे है सनम मूवी से, तारों का चमकता गहना हो, यानी कि जिनकी भी शादियां हैं उनके लिए गाना डेडिकेट है जी।

0: तुम्हारे साथ। दत्त नारायण जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। और फरमाइश शो में आप आरजे रीना और अखिल जी के साथ कनेक्ट हैं। समय की बात करूँ तो 4:00 यानी कि 36 मिनट हो चुके हैं। गुड वाली इवनिंग है जी आप सभी को। और अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो आप अपने रेडियो के बैकग्राउंड का आवाज बंद करिए, मतलब हेलो जो आपके बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा है ना उसकी वॉल्यूम कम कर लो आप।
1: कर ली।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुंजन है, मैं मंजुला प्राइमरी से बोल रही
0: हूं। अच्छा जी, क्या करती हो गुंजन आप?
1: स्टडी फर्स्ट क्लास में।
0: अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
1: नरेंद्र मोदी जी।
0: उनका पूरा नाम पता है आपको? चलो आप ये बताओ कि गाना कौन सा सुनना चाहती हो? ओके जी, जब भी आपकी रीना जी से बात, हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी आप मुझसे बात करती हो मैं आपकी टांग खिंचाई कर देती हूँ। चलिए श्रोताओं ये गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार है, यानी कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। और आप चाहते हैं कि भैया गाना सुने तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9823789689 क्योंकि समय हो चुका है यानी कि 4:38 और कल संडे हैं तो आप संडे को इस मौके का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे, इसीलिए अभी कॉल करना है। लेकिन याद रखिए जिन्होंने कॉल कर दिया वो ना करे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
6: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
5: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। फरमाइश में आप आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड समय की बात करूं तो 4:48 हो चुके हैं और तारीख यानी कि 22 अगस्त, और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया था, दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, फतेह अली खान जी की आवाज में। मतलब ये जो गाना है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब जो इंसान ना रोए ना उस गाने को सुनकर रोने लग जाते इस गाने को। मतलब जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो 9वीं-10वीं बार में इस गाने को फाइनल किया गया था, क्योंकि जब भी सिंगर इस गाने को गाते थे उनकी आंखों से आंसू छलक जाते थे और फिर वो गाना गा नहीं पाते थे, यानी कि रीटेक लेना पड़ जाता था। मतलब काफी बार गाने के बाद ये गाना यानी कि फाइनल हुआ, तब भी जब इस गाने को कोई सुनता है ना, बड़े शिद्दत से उनकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा होता है। और फिलहाल बिना किसी देरी के हम अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
8: हेलो,
7: हाँ जी सर, नमस्कार।
8: नमस्कार जी,
7: क्या नाम है आपका?
8: मैं कमल बोल रहा हूँ
7: जी,
8: रोड दांगन फाजलपुर से।
7: ओके जी, बताइए सर, कैसे हैं आप?
8: बस बढ़िया है।
7: क्या करते हैं सर आप?
8: खेती का काम है अपना।
7: अच्छा, बताइए सर, फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज की
8: फरमाइश? गाने के बोल हैं, जसोमती मैया से भोले नंदलाला।
7: अच्छा, जन्माष्टमी आने वाली है, इस पर सुन रहे हैं आप ये गाना?
8: जी
7: जी। तो किसी का नाम लेना चाहेंगे सर?
8: नहीं, घर परिवार की सुन रहे हैं सारे।
7: चलिए, अच्छी बात है, सभी के साथ फिर आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके, तो देखना है श्रोताओ ये कि लास्ट लकी कॉलर अब कौन बनते हैं। फिलहाल ये गाना सुनते बिना किसी देरी के ये शो

0: और साथ ही साथ म्यूजिक की बात करूं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की आपने बहुत ही सुंदर वाली गाना, मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुनकर आपको सुकून मिलता है, उन गानों में से एक है ये। चलिए फिलहाल बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी,
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: दीदी मेरा नाम मोहिनी है, मैं
0: मोहिनी जी, कुंदनपुर से बोल रही हैं आप जी? क्या करती हैं आप?
1: दीदी मैं पढ़ाई करती
0: अच्छा, पढ़ाई करती हो, स्कूल या कॉलेज?
1: हूँ। दीदी
0: ओके, तो बताओ कौन सा गाना सुनोगी मोहिनी?
1: चांद के पार चले।
0: चांद के पार चलो। चलिए आपका एक गाना हम सुनवाते हैं आपको, लास्ट लॉक, आप लकी कॉलर बनी है, कैसा लग रहा है आपको? चलिए हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी? ओके, चलिए श्रोताओं अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। चांद के पार मूवी से आप ये गाना सुनेंगे, क्योंकि मूवी का नाम भी चांद के पार चलो और गाना भी चांद के पार चलो वाला ये गाना है। और इसी गाने के साथ हम लेंगे इजाजत, आपको मिलने वाले हैं यानी कि मंडे को मिलेंगे, ये नहीं पता मॉर्निंग में मिलेंगे या इवनिंग में मिलेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं, ठीक है जी, बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सबके बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है।
0: लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहां पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
3: रवि कुमार।
2: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
3: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवास मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
2: जी।
3: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
2: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
3: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
2: जी,
3: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
2: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा?
3: वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
2: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
3: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें बहुत आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
2: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
3: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
2: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
3: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
2: जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अहीर से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: एक परिवार के लिए पक्का घर, मतलब बारिश की चिंता से राहत,
0: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह, और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
1: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
0: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
0: बरौली अहीर के गांवों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
1: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
0: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
0: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
1: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
0: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
1: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
0: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी
2: है। तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन लोग कहा करते हैं, तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं और बच्चे अपन खाना पाना देते रहते हैं, तो कचू के तब जाते हैं आते हैं, हारी दुखारी वही नहीं आ जाती है।
2: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ में चार पैसे रहते तो आपको अपने बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
4: हाँ, वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खर्च है।
2: हाथ में पैसे होते तो आप अपना अपनी मनमर्जी से खर्च करती है ना।
4: हाँ, फिर तो कर लेते आ जाते हैं। तो
2: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
4: सरकार से यही है कि पैसे भी मिलते जाए और अपना खर्चा तो खिलते जाए गरीब आदमी, और क्या है।
1: प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
0: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
1: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
0: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
1: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैम।
2: तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
5: मैम, जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम, और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम। इनके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है।
2: जी, तो सर, इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
5: मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
2: तो सर, अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हैं।
5: मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम, उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था झोंपड़ी में रहते थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास दिव्यांग और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम और जॉब कार्ड भी है। अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी रामजी योजना में भी काम कर रहे हैं।
2: आज सर अब बात आती है महिलाओं युवाओं किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।
5: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबी जी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबी जी राम जी योजना है बहुत अच्छी योजना है, इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
2: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं।
5: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर लें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कारण से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहें 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल। सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
5: मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है कहीं भी आती है तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बस मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
5: मैम संदेश यही है अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें, अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहां पहुंच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते तो उसके बाद वो जिले से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
1: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है,
0: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
1: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
0: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
0: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
1: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
0: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
1: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
0: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
1: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
0: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है। और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है। और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो है अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
0: हाँ,
1: वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो,
1: हाँ,
0: गाड़ी हो,
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन उसका डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएलए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है वो कोई और लेके जा रहा है तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो लिहाजा आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। और कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे दो मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, दो कदम पर ही जाना है।
1: दो मिनट का काम होता है लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई दो मिनट के अंदर ही तो आप क्या करेंगे?
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग भी कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
1: अनिवार्य है, सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके।
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव कर।
0: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, जो ई चलान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चलान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर होगी, आपका चलान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चलान कट जाएगा आपका उसमें।
0: ओके।
1: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चलान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, गंभीर अपराध है। इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी। इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओ, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात ना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेंजी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते हैं ना, तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते हैं।
1: हाँ, तो वो सब चीजें गलत हैं। वो एक स्टंट जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टंट वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टंट मारते
1: हैं, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
1: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते
1: हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर, डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है।
1: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
0: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
1: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
0: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
1: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस यही दो तीन चीजें हैं।
0: सर, जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
0: वो तो है सर।
1: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
0: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करे और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियां हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 9.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी। नई

0: आज की हमारी यात्रा हमें लेकर आई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहाँ इतिहास भी है, संस्कृति भी है और बदलते समय के साथ विकास की एक नई तस्वीर भी है।
1: जी हाँ, आज बात हो रही है बिजनौर की, एक ऐसा जिला जिसकी पहचान उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ गाँव, खेतों, मेहनत कश परिवारों और अपने जीवन सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से भी है।
0: बिजनौर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। लगभग 4,049 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले में 2,500 से अधिक गांव हैं। यहां की ग्रामीण आबादी की जिंदगी खेती, छोटे व्यवसाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है।
1: और बिजनौर की बात हो तो इतिहास का जिक्र कैसे ना हो। विदुर कुटी, नजीबुद्दौला का किला और यहां के दूसरे ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल इस जिले की पहचान को और भी खास बनाते हैं।
0: लेकिन आज की हमारी कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं,
1: आज की कहानी है उस बदलाव की जो सरकारी योजना के माध्यम से आम परिवारों के जीवन तक पहुंच रहा है।
0: और इस बदलाव की एक महत्वपूर्ण कहानी है निरक्षित महिला पेंशन योजना की।
1: क्योंकि जब परिवार की जिम्मेदारी अकेले किसी महिला के कंधे पर आ जाती है तब छोटी सी आर्थिक सहायता भी उसके लिए बड़ा सहारा बन सकती है।
0: यही वजह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं
1: बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति को यह भरोसा देना भी है कि मुश्किल समय में व्यवस्था उसके साथ खड़ी है।
0: बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन और उनके लाभ को पात्र लोगों तक पहुंचाने पर लगातार काम किया गया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनका उद्देश्य पात्र नागरिकों तक सरकारी सहायता और सुविधा पहुंचाना है।
0: लेकिन किसी योजना की सफलता केवल योजना बनाने से नहीं होती, उसके लिए जरूरी है सही योजना, सही प्रक्रिया और उसका जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन।
1: और यही जिम्मेदारी प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी तक ही होती है।
0: बिजनौर में भी समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े तंत्रों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी और प्रक्रिया को लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया जाता है।
1: यानी लखनऊ में बिना योजना जब बिजनौर के किसी गांव या मोहल्ले में रहने वाली महिला तक पहुंचती है तब वह योजना कागज से निकलकर उसके जीवन का हिस्सा बनती है।
0: और यही बदलाव की असली तस्वीर है जहां सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक प्रयास और लाभार्थी की जरूरत एक दूसरे से जुड़ते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के माध्यम में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
0: और बिजनौर में निरक्षित महिलाओं के लिए पेंशन वितरण योजना भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है।
1: सबसे अहम बात, पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
0: सही जानकारी, सही प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर मिलने वाली सहायता किसी महिला के जीवन में आत्मविश्वास का आधार बन सकती है।
1: आइए सुनते हैं एक ऐसे ही लाभार्थी की आवाज।
2: मैं रेडियो आवाज बिजनौर की। आज हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में उनके विचार व उन्हें मिलने वाले लाभ। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले हमारी श्रोताओं को बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं?
3: मेरा नाम संजय रानी है, मंडावर बिजनौर सहबाजपुर की रहने वाली।
2: मैम, क्या आप निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ ले पा रही हैं?
3: जी मैडम।
2: मैम, आप मुझे बताइए कि इस योजना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला?
3: जी मैडम, ये हमारे समाज कल्याण विभाग है, इसमें हमें पता चला तो हमने अपना फॉर्म आवेदन किया है सर, तो हमें यहाँ से लाभ मिला समाज कल्याण से।
2: क्या आपको इस योजना का लाभ समय से समय तक मिल रहा है?
3: जी मैडम, हमें समय पे मिलता है। तीन महीने में 3,000 रुपए, एक महीना 1,000 रुपए आ जाते हैं।
2: मैम, आपसे कोई शुल्क लिया जाता है इस राशि के मिलने से या आवेदन प्रक्रिया में कभी किसी ने कोई शुल्क मांगा हो?
3: नहीं मैडम, हमसे कोई शुल्क नहीं लिया।
2: क्या मैम आप संतुष्ट हैं जो लाभ सरकार दे रही है आपको, उससे हो रहा है, आपका उपयोग हो रहा है ये लाभ?
3: जी हाँ मैडम, हम संतुष्ट हैं इस लाभ से। हम जो हमें पेंशन आती है तो हम क्या अपने बच्चों को मतलब पैसे निकाल के अपना खर्चा कर लेते हैं। सरकार हमारे लिए यही कर दी है, यही बहुत है। हम तो चाहते हैं कि और अच्छा हमें मतलब मान देनी है पेंशन।
2: जी मैम, अगर आपसे कोई और औरत है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है, वो आपसे इस बारे में पूछे, तो आप उसको कैसे और क्या बताएंगे?
3: जी मैडम, मुझसे पूछती है, कई महिलाओं ने पूछा भी है मेरे से कि ये आपकी पेंशन कहाँ से आती है। मैंने काफ़ी महिलाओं को बताया कि ये वहाँ समाज कल्याण में जाओ, जन सेवा केंद्र से आवेदन कराओ, आवेदन करा के 3-4 महीने में आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी।
2: मैम, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, इसके आवेदन प्रक्रिया से लेकर इसके लाभ के पैसे मिलने तक क्या आपको कोई परेशानी हुई है?
3: नहीं मैडम, हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
2: ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि योजना का लाभ मिल रहा है और सरकार आपके लिए ये लाभ वाली चीजें कर रही है। धन्यवाद। देखिए आप सभी कैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इन सभी महिलाओं को मिल रहा है जो इनके घर में उपयोग हो रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे हम सरकार का। और मैम,
3: मैडम धन्यवाद सरकार,
2: थैंक यू सो मच। रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज बिजनौर की आज के हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम व आप कहाँ से आई हैं यह बताएं।
4: जी मेरा नाम बाला देवी की तरह बिजनौर से आया हूँ।
2: आप बिजनौर की ही रहने वाली हैं। मैम, जो योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है?
4: जी इसका लाभ मिल रहा है।
2: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आपको इस योजना के बारे में कब और कैसे पता चला?
4: जी हमें खुद ही पता चला था समाज कल्याण विभाग से।
2: मैम, आपने इसका आवेदन कैसे किया?
4: जी ऐसे किया था कल्याण समाज कल्याण विभाग से,
2: विभाग से जो ये विभाग बता रही हैं आप, इसी से आपने आवेदन किया। क्या उस दौरान किसी भी व्यक्ति ने कोई परेशानी की इस बारे में कि ये ना हो, आवेदन प्रक्रिया ना हो पूरी, या कोई शुल्क लिया हो आपसे?
4: नहीं नहीं, हम सब शुल्क लिया पता भी नहीं था, यहाँ यहाँ का पता चला था।
2: अच्छा, आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसका आप उपयोग कैसे करती हैं अपने घर में?
4: मुझे हर से भी काम आ रहा है।
2: आप क्या करती हैं मैम?
4: फिलहाल तो कुछ नहीं करती, घर पर रहना।
2: कोई और औरत अगर आपसे जानना चाहे इसके बारे में तो आप उसको क्या बताएंगे?
4: यही बताएंगे कि समाज कल्याण विभाग से पता करो, वहाँ सारा पता चलेगा।
2: क्या आप इस मिलने वाले सरकार से लाभ, जो सरकार से लाभ मिल रहा है आपको, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
4: जी बहुत
2: धन्यवाद मैम, आपने जो हमें ये जानकारी दी। देखिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, उनके घर तक पहुँच रहा है और वो संतुष्ट भी है। धन्यवाद।
1: आपने सुना, एक महिला के लिए पेंशन की राशि सिर्फ एक रकम नहीं होती।
0: कभी उससे घर की छोटी जरूरत पूरी होती है,
1: कभी दवा का खर्च निकलता है,
0: और कभी अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास मिलता है।
1: यही तो सामाजिक सुरक्षा का असली अर्थ है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर।
0: और जब सरकारी विभाग लाभार्थी तक योजना की जानकारी और प्रक्रिया पहुँचाते हैं तो सरकारी योजना और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो जाती है।
1: यही वजह है कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना की सफलता में केवल नीति और बजट ही नहीं,
0: बल्कि उसे जमीन पर लागू करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन की मेहनत भी महत्वपूर्ण होती है।
1: जब योजना की जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे, आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाए और पात्र लाभार्थी को उसका लाभ मिले,
0: तब विकास का असर सरकारी कागजों से निकलकर सीधे परिवार की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिजनौर की इस विकास धारा में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना भी अपनी भूमिका निभा रही है।
0: एक तरफ प्रदेश स्तर पर योजनाओं का संचालन,
1: दूसरी तरफ जिला स्तर पर उनका क्रियान्वयन,
0: और तीसरी तरफ लाभार्थी तक पहुंचती सहायता,
1: यही तीनों मिलकर किसी योजना को वास्तविक बदलाव में बदलते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का वास्तविक मूल्यांकन भी इसी बात से होता है कि उनका लाभ पात्र परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
1: और बिजनौर की ऐसी कहानी हमें बताती है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थी की जरूरत आपस में जुड़ती है तो बदलाव महसूस किया जा सकता है।
0: लेकिन बिजनौर की तस्वीर सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है,
1: यहाँ गाँव की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विकास के अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं।
0: एक तरफ खेतों में मेहनत करता किसान,
1: दूसरी तरफ अपने परिवार को संभालती महिलाएं।
0: आगे बढ़ने का सपना देखते हुए
1: और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद करते बुजुर्ग
0: यही मिलकर बनते हैं बिजनौर की विकास गाथा।
1: और इस गाथा में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उन लोगों तक सहारा पहुंचाने का काम करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
0: निराश्रित महिला पेंशन योजना की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तभी सतर्क है
1: जब उसका लाभ समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे,
0: जब सहायता लेने के लिए किसी आर्थिक खर्च का बोझ ना हो
1: और जब लाभार्थी को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिले।
0: बिजनौर की धरती पर बह रही विकास की धारा
1: इतिहास की विरासत को साथ लेकर वर्तमान की जरूरत को समझते हुए
0: और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है।
1: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: और यही थी बिजनौर में बहती विकास धारा की कहानी,
1: एक ऐसी कहानी जिसमें योजनाएं हैं,
0: लाभार्थी है
1: और सबसे बढ़कर बेहतर जीवन की उम्मीद है।
0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपकी शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूँ भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ, तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
2: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
2: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
0: बहुत जरूरी है।
2: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
0: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
2: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
2: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
0: आई थिंक
2: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
0: क्या बात है।
2: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
0: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है,
2: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
0: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना।
2: बिल्कुल।
0: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
2: देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके है ना, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
0: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
2: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना, आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
1: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
2: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके,
2: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
0: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
2: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
2: PIL
0: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: लिटिगेशन के बारे में बात।
2: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
0: ठीक है,
2: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
0: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
2: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
0: करेक्ट,
2: उसको बैठ के
0: समझौता किया जाए, बेसिकली
2: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है, कुछ है, तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाव पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए।
0: मतलब दोनों पार्टी के बीच,
2: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है, कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
0: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
1: जी। हाँ,
0: तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
2: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
0: हाँ, ठीक है,
2: सुनी होगी ना?
0: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
2: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
0: करेक्ट
2: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
0: राइट,
2: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
0: ठीक है,
2: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
0: ओके,
2: ठीक है,
0: अच्छा,
2: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
0: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
2: बिल्कुल,
0: तो पब्लिक
2: की बात होनी चाहिए।
0: करेक्ट,
2: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
0: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
2: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
0: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
2: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
0: आप पब्लिक के लिए ही,
2: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
0: राइट,
2: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
0: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें
2: ही बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
0: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से, कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
2: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
0: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
2: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और दूसरे एप्लीकेशन।
1: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
2: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
0: ठीक है,
2: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर, अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
2: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं,
0: ठीक है,
2: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
0: ठीक है,
2: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
2: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
2: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
0: करेक्ट, अरावली। हाँ,
2: तो अरावली हिल्स क्या था, अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। वो उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
0: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रीना और आनंद है जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
2: देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हम दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
2: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म।
0: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यार पब्लिक सीखने को मिली,
2: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
0: जी जी सर,
2: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके okay.
2: ठीक है.
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं. और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था. और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए. हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप तो गूगल नहीं करना
1: देना. गूगल करके निकाल लेंगे तो मैं.
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ. जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं. आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट. हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे. हाँ प्लीज.
1: हाँ तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
2: यस बिल्कुल कराई जा सकती है. अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं. यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें.
1: क्या बात
0: okay.
1: है.
0: अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा.
2: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है. आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है. डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है.
0: एब्सोल्युटली 100%
2: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है. और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है. तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी. और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए. तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है.
0: 100% राइट. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच. अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें.
2: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे, जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले. अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता से.
0: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
2: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही.
0: करेक्ट करेक्ट वही ना,
2: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना.
2: हाँ
0: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
2: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: रहती
2: है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं.
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
2: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके. लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है. तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है. और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है.
0: ऑल राइट, सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया. और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में. एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है. सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे. एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना. और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
2: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
0: जी जी
2: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
0: भी अपने ऐड कीजिए,
2: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM.
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला. और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
2: अच्छा,
0: के लोग हैं.
2: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं,
0: जी सर,
2: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है.
0: हम अपने समुदाय की बात करते हैं
2: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं.
0: गॉट इट सर. और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे में लेकिन पता भी
0: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
1: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
0: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायुनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी.
1: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
0: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
1: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
0: वो मुझे नहीं
1: तो
0: पता. फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
1: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं श्रोताओं आप सभी से, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
0: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ देखता, बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे स्पेस आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है,
2: तो उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज कहते हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाली खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: कभी कभी बदलाव की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, ना उनमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कोई चमकदार मंच, बस एक परिवार होता है, कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों के बीच एक मदद का हाथ।
1: किसी के लिए वह मदद बनती है एक सुरक्षित छत, किसी के लिए परिवार के भोजन का सहारा और किसी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बीच आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर जिंदगी में बदलाव की वजह बने।
1: आज विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर चल रहे हैं देवरिया, जहां हम सुनेंगे विकास की कोई बड़ी घोषणा नहीं, बल्कि एक आम इंसान की अपनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके जीवन में बदलाव आया है।
0: हमारी मुलाकात एक ऐसे लाभार्थी से है जिन्होंने जीवन की चुनौतियों के बीच सरकार की योजना का लाभ प्राप्त किया है। अब कहानी हमारी नहीं, उनकी अपनी जुबानी।
1: आज हम उपस्थित हैं देवरिया के अगस्त पार गांव में और यहां पर हम लोग ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो किन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाएं, तो हमारे साथ एक ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: चंद्रिका प्रसाद।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगस्त पास पश्चिम तरफ।
1: जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और विकलांगता के आधार पर आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: हमको यही विकलांगता के आधार पे आवास मिला है सरकार की तरफ से।
1: जी,
2: अभी बनना थोड़ा बाकी है, छत लगाना है।
1: जी,
2: और ये मिला है।
1: जी, ये कब मिला आपको?
2: अभी हो गया 2-4-5 महीने हो गया।
1: जी, अभी हम लोग देख सकते हैं इसका ढलैया कराना, लिंटर कराना बाकी है।
2: बाकी है
1: जी,
2: अब कराएंगे इसको, ढलैया अभी 1-2 महीने में करा देंगे।
1: इसके अलावा और कौन कौन सा योजना का लाभ ले रहे हैं आप?
2: राशन कार्ड में है, नाम है, राशन मिलता है।
1: जी, तो आपको आवास मिला हुआ है और राशन कार्ड बना हुआ है जिसके तहत आपको राशन मिल रहा है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा है आपके लिए?
2: सरकार को धन्यवाद देना चाहूँ, अच्छा है, मिल रहा है राशन, नहीं तो पहले नहीं मिलता था।
1: जी,
2: बढ़िया है, मिल रहा है, अभी क्या करेंगे।
1: पहले क्या दिक्कत होती थी घर नहीं बनने से?
2: पहले दिक्कत थी घर नहीं बनना तो कहाँ रहेंगे, मड़ई टाटू में रहते थे और क्या।
1: जी,
2: जैसे मड़ई टाटू में जी रहे थे और कुछ।
1: जी, और ये राशन मिलने से क्या फायदा?
2: राशन मिलने से क्या फायदा, रोटी रोजी पेट भरता है और क्या। पहले दिक्कत बहुत थी, बहुत दिक्कत बोले तो दिक्कत, रोजगार नहीं, कुछ नहीं तो क्या करेंगे।
1: तो अभी आपने देखा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, इसके तहत हम लोग अगस्त पार गांव में पहुंचे हुए थे और यहाँ पे इन भैया से हम लोग ने जाना कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ ले रहे हैं ये, जो विकलांगता के आधार पर मिला हुआ है, और पेंशन भी मिल रहा है और राशन कार्ड के तहत इनको राशन भी मिल रहा है, तो इन सभी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
3: किसी कहानी में सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वह कहानी खुद उसी इंसान की आवाज में सुनाई दे जिसने उसे जिया है, और यही वजह है कि लाभार्थी की आवाज किसी भी सरकारी योजना का सबसे मानवीय चेहरा बन जाती है।
0: दिव्यांग जन के लिए सहायता केवल आर्थिक मदद का विषय नहीं, ये उनके जीवन में सम्मान, सहारा और आत्मनिर्भरता की संभावना से भी जुड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, और जब ये सहायता किसी जरूरतमंद तक पहुंचती है तो उसके मायने सिर्फ एक सरकारी लाभ तक सीमित नहीं रहते।
3: लेकिन किसी योजना का लाभ जमीन पर कैसे पहुँचता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, लाभार्थियों तक पहुँचने में प्रशासन की क्या भूमिका है, और पात्र व्यक्ति अगर अभी तक योजना से नहीं जुड़ा है तो वो क्या करे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं देवरिया के जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से।
4: सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा में खाने पीने रहने और विकास के लिए सभी को समान और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा आप देखेंगे ICDS डिपार्टमेंट द्वारा पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, और लोग बेशक हो जाते हैं तो उनके लिए मनरेगा है, आवास दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया जा रहा है, और भी जैसे कृषि सम्मान निधि है, कामधेनु योजना है, नंदनी योजना है, जिसके लाभ उठा के लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। अब जैसे जो भी सरकारी पैसा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका अप्रत्यक्ष लाभ आप देखेंगे लोगों के रोजगार में मिलता है। जैसे आप कोई व्यक्ति आवास बनाता है, लगभग 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, शहरी क्षेत्र में यह धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो जाती है। तो आप देखेंगे तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, छड़ की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है, और मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो इन कार्यों के लिए और सामग्री के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सरकार अपने नागरिकों के लिए हर एक विकास के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। बस देवरिया के लोगों को आपका सहयोग चाहिए प्रशासन के साथ। आप कोई भी समस्या हो जो जायज हो, और यदि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटा हो, तो आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने वार्ड मेंबर से, ईओ से, बीडीओ से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जगह जगह जनसेवा केंद्र हैं, वहां उचित जानकारी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार लाभान्वित हो सकते हैं। आशा है कि आप अपना सशक्तिकरण कर देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।
0: सोचिए एक परिवार के लिए अपना घर क्या होता है, सिर्फ ईंट, सीमेंट और चार दीवारी नहीं, घर होता है सुरक्षा, घर होता है सुकून, और सबसे बढ़कर अपने होने का एहसास।
3: इसी सोच के साथ पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास योजना जैसी पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जहां जरूरतमंद परिवारों को पक्के और सुरक्षित आवास की दिशा में सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
0: और जब किसी परिवार को अपने घर का सहारा मिलता है तो उसके साथ बदलती है उस परिवार की उम्मीद।
3: हमारे साथ मौजूद लाभार्थियों की कहानी में भी आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में।
1: नमस्कार, मैं हूँ हेमा। आज हम उपस्थित हैं देवरिया के महाराजपुर गांव में, और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस महाराजपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ एक भैया उपस्थित हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: जितेंद्र
1: जी, कौन से गांव से हैं?
5: महाराजपुर गांव से।
1: जी, आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का जो है लाभ मिल रहा है?
5: एक घर मिला है, हमारी पेंशन आता है सरकार की तरफ से।
1: राशन कार्ड में आपका नाम है क्या?
5: जी
1: जी। और जॉब कार्ड भी है?
5: जॉब कार्ड भी है
1: जी। अच्छा, घर बनने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: हम घर बनने से हमको बहुत लाभ मिल गया है, अरे आराम मिलता है, मतलब हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है, नहीं तो हम लोग पलान में रहते थे
1: जी। विकलांग के आधार पर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हैं?
5: पहले स्थिति थी कि हम लोग बारिश से भीग जाते थे, रहने का कोई सुविधा नहीं था, तो अब सरकार द्वारा मिला है
1: जी।
5: अब हमारा घर बन गया है, अब घर में हम रहते हैं
1: जी। और राशन कार्ड में भी आपका नाम है?
5: जी नाम है, सरकार की तरफ से कम भी मिलता है तो पापा हमारे करते हैं।
1: अच्छा, सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो पहले जो है क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आए हुए हैं?
5: पहले हम लोग के पास गरीबी था, अब सरकार की तरफ से मिलता है तो थोड़ा हम लोग खा पी लेते हैं।
1: जी, अब अच्छी स्थिति हो गई
5: है। अच्छी स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री योजना के लिए।
1: अच्छा, आपके गांव में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उन लोग को क्या बताएंगे?
5: हम यही बतलाएंगे कि कागज पत्र बनवा लीजिए और जाकर भर दीजिए, मिल जाएगा आप लोग को भी, जैसे हमको मिला है, हमको रहने के लिए सुविधा मिला है, हम उन लोग को भी बतलाएंगे जाकर।
1: जी, इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
5: सबसे ज्यादा जोगी जी को धन्यवाद देंगे। और हमको पहले अनाज उनाज खरीदना पड़ता था, राशन खरीदना पड़ता था, अब उतना नहीं खरीदना पड़ता है, सब्जी उब्जी खाली खरीद कर खाते हैं हम लोग। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, हमारे जैसे विकलांग आदमी को लोग सुविधा दिए हैं।
1: तो अभी आपने देखा कि हम लोग देवरिया के महाराजपुर गांव में आए हुए हैं और भैया से बातचीत हुई और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया और क्या क्या योजना का लाभ इनको मिल रहा है, जैसे कि इनको मुख्यमंत्री आवास योजना जो विकलांगता के तहत मिला हुआ है और इनका राशन कार्ड है और जॉब कार्ड बना हुआ है, तो इन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है और ये बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये जो हम लोग कार्यक्रम चल रहा है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हुए थे और भैया के द्वारा बताया गया कि कौन कौन सी योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। मैं थी आपके साथ हेमा, नमस्कार।
0: किसी के लिए पक्का घर शायद हमारे लिए सामान्य बात हो, लेकिन जिस परिवार ने वर्षों तक असुरक्षा या अभाव के बीच जीवन बिताया हो उसके लिए अपना घर मिलना एक नई शुरुआत जैसा होता है।
3: और यही वह जगह है जहां सरकारी योजना और आम नागरिक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं। विकास की एक और बुनियादी जरूरत है भोजन, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे पहली चिंता होती है घर की रसोई चलती रहे।
0: इस दिशा में राशन कार्ड पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
3: और इस योजना का महत्व शायद वही बेहतर समझ सकता है जिसके घर की रसोई तक इसका सीधा असर पहुंचता है।
0: एक कार्ड एक व्यवस्था, लेकिन किसी परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी सहारा।
3: और यही वजह है कि विकास को केवल बड़े निर्माण कार्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी समझना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम परिवार के जीवन में कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंच रहा है।
0: दिव्यांग जन की सहायता हो, आवास का सहारा हो या फिर राशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, इन सभी योजनाओं के पीछे एक साझा उद्देश्य दिखाई देता है, जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना।
3: उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
0: और इन योजनाओं की सबसे खूबसूरत तस्वीर किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लाभार्थी के चेहरे पर दिखाई देती है। किसी के लिए सरकार की योजना एक सुविधा है, लेकिन किसी और के लिए वही सुविधा जिंदगी का सहारा बन जाती है। एक घर, एक राशन कार्ड, एक सहायता, सुनने में शायद छोटी चीजें लगे, लेकिन जब यही छोटी छोटी मदद किसी परिवार की जरूरत पूरी करती है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।
3: किसी के लिए यह आत्मसम्मान की ओर एक कदम है, किसी के लिए सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है और किसी के लिए मुश्किल वक्त में मिला एक जरूरी सहारा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य इसी तरह समाज के जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना है।
3: और विकास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कहानी किसी एक की नहीं होती, हर लाभार्थी के साथ इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है।
0: आज देवरिया से सुनाई गई ये आवाजें हमें यही याद दिलाती है कि विकास तब पूरा होता है जब उसका लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
3: और जब किसी की जिंदगी में सरकारी योजना एक नई उम्मीद जगाती है तो वह सिर्फ एक लाभार्थी नहीं रहता, वह विकास की कहानी का हिस्सा बन जाता है।
0: इन्हीं कहानियों को आपके सामने लाता रहेगा
3: आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: मैं हूं आपका सुमंत कुमार
3: और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हेमा।
0: मिलते हैं फिर विकास की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी। नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत
3: की भारतीय जोड़ी ने कहा
2: ऐसा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड, सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629, विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 44 इकाइयों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जबकि 33 गैर अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनरमाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। एक रिपोर्ट।
6: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम को सकारात्मक सुशासन का एक अच्छा उदाहरण बताया है। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कॉरिडोर पर रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो एक समय देश में अकल्पनीय था। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जो परियोजना शुरू हो उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
7: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
5: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया।
8: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद तथा सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। विशेष लोक अदालत की 16 पीठों के समक्ष 600 से अधिक मामले सूचीबद्ध किए गए थे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रशांत विहार में आज मेगा मार्च का आयोजन किया। श्री वाही ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित मार्च में लगभग 2 किलोमीटर चलकर श्रमदान किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने सड़क किनारे लगे पेड़ों की छटाई करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने और गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। मार्च के दौरान मच्छर मारने वाली कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। श्री वाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छता दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक कार्य है, लेकिन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इस मुहिम में हमें जनता का भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर और घर से निकलने वाले कूड़े को सही तरीके से पृथक कर तथा कूड़े को कूड़े की गाड़ी में डालने का संकल्प लेकर हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, कूड़ा मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: महापौर प्रवेश वाही ने आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 8 में आयोजित एंटी डेंगू माह जागरूकता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आने वाले हफ्ते में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग करने के आदेश भी दिए। श्री वाही ने मच्छरों की रोकथाम के लिए और उनसे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 011-2705-0132 और 011-2705-0133 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। महापौर ने कहा कि नागरिक इन नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जोन के उपायुक्तों ने एक वार्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में नगर निगम ने कहा कि संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे और शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें विकास की प्राथमिकताओं, असरदार तालमेल और बेहतर सर्विस डिलीवरी जैसे विषय शामिल थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अच्छे कानूनों के लिए अच्छे तथ्य, विश्वसनीय शोध और जमीनी स्तर के प्रमाण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ये ज्ञान विधायिकाओं और सरकारों तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदार बनना होगा। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फिर फ्री टू एयर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिले की टीम ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। अभियान के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत 29 मामले, विभिन्न आपराधिक और निवारक कार्रवाईयों के अंतर्गत 151 लोगों को तथा आबकारी अधिनियम के मामलों में अवैध शराब के 501 पाउच और लगभग 1800 बोतलें बरामद की हैं। इसके अलावा डकैती और झपटमारी के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये प्रवर्तन अभियान इस महीने की 17 तारीख से 20 तारीख तक चलाया। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने अवैध शराब की आपूर्ति में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 778 क्वार्टर और आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दिल्ली के मधुबन चौक पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्काई वॉक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटर रिंग रोड पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है।

0: यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी गहरी लोकतांत्रिक विरासत को करीब से जाना और समझा। दिल्ली विधानसभा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सार्थक लोकतांत्रिक आउटरीच पहल के जरिए युवाओं की भागीदारी को लगातार मजबूत बना रही है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पावन माटी कलश वंदन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सोमवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को चीन की ली यू शेंगशू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है, इसीलिए सतर्क रहिए। और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
3: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर से, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
3: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, एडवोकेट।
4: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में, जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
3: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
4: देखिए जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी, और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं उससे पहले। फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई, मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
3: और मुझे लगता है कि सर जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो सर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
4: देखिए हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके क्या होता है, जैसे ये जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
3: उसके फोन में कनेक्ट
4: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है। और जिस से हमें नुकसान हो सकता है, वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
5: करेक्ट करेक्ट।
4: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना है।
5: लेकिन
4: आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
4: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि भाई जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
5: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
4: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
5: एक आसान जरिया।
4: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, ठीक, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दें, और याद रखिए ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
5: बिल्कुल,
4: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
5: पैसे चाहिए थे
4: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
5: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
4: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में
5: चाबी दे दी।
4: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
5: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
4: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगता है?
4: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्था है, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या CVV या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते, ये ऊपर से RBI की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
5: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। UPI और QR कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
4: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि QR कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में QR कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
5: बिल्कुल करेक्ट।
4: तो आपने अगर QR कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको QR कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर QR कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेरिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
5: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए 10 रुपए।
4: एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
5: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
4: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से संभा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
4: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन QR कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने QR कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
4: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे हाँ, हाँ। उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
5: ये बिल्कुल वही
4: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
5: बिल्कुल,
4: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
5: बिल्कुल नहीं देना है,
4: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओं। और
4: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी OTP जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
5: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
4: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
5: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा?
4: मैसेज क्यों करेगा?
5: क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख लें।
4: आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है, या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
5: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
4: देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं। कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी सीबीआई से कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
5: बिल्कुल,
4: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
5: क्या बात।
4: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
5: नहीं है,
4: ठीक है? किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें, या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं, हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
4: देखिए, लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
5: तो प्रूफ मिल गया उनको,
4: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है, या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
5: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें

0: बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि आज डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
0: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
1: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें। जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा, तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
0: क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
1: जी देखिए बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है, और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसके डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, हर चीज को, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती उसी तरीके
0: बिल्कुल,
1: से
0: बिल्कुल
1: स्क्रीन पे हर चीज आपके बेनिफिट की नहीं होती है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है श्रोताओं, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
1: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अब क्या है धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लग गए हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
0: दुगना हो जाएगा।
1: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
1: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है, तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है। ठीक है, पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो क्या सर, ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
0: जल्दी करी है। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
1: आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
0: क्या बात है। तो श्रोताओं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहां पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
1: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करेगा। जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
0: सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
1: देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें,
0: इग्नोर करना है।
1: तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आदत है ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं। कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
0: क्या बात है। सर, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
1: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो, और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है। तो मैं यही बस अभी भी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, ये है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइलों का अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है OTP, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें, अवेयर रहें।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे, इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070 0552।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
6: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है मथुरा में गूंजता विकास।
1: तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच, युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवस्थाएं से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है, गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया है, वो चयन भी एक टीम, ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है, कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सेचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का सूत्र है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी, उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूँ आपका आरजे जय
0: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
4: हेलो भावना जी।
5: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहां से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
4: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
5: फोबिया।
4: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
5: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है, तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
4: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर हो जाता है।
5: Exactly.
4: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
5: एग्जैक्टली।
4: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओ के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फरवरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है.
5: एग्जैक्टली.
4: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए.
5: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है, क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं. और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा.
3: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं.
4: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है. इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
5: जी.
4: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया. तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
5: जी.
4: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास टेंथ में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
5: जी.
4: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया. आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
3: बिल्कुल
4: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं. सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
5: जी.
4: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन करेक्ट. एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उसे मुझे आगे बढ़ाना है,
5: उसे प्रूव करना है कहीं. लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा. ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
4: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो कह सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया।
5: वही चीज।
4: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
5: एग्जैक्टली और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में जहाँ पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
6: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए क्योंकि वो इतना प्रेशर

0: विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
1: एग्जैक्टली
2: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
0: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
2: जी
0: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिता जी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
1: Correct.
0: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
1: करेक्ट, और वैसे भी देखिए स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 MHz अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
0: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है।
1: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
0: एग्जैक्टली लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है।

0: और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
1: जी,
0: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा.
1: एग्जैक्टली.
0: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
1: जी.
0: बहुत नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है. आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है. इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी.
1: प्लीज.
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं. और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी. बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है. उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है. बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए. जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाए, देख पाए कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था. ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है.
1: ठीक है.
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए.
1: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं. कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे. तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते.
1: बहुत बढ़िया, करेक्ट.
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी. हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए
1: जी.
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना समझना सब कम हो जाता है. उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए. सीरियसली बेटा, मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो. बात खत्म हो जाती है.
1: ठीक है. मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है. आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का.
1: ठीक है.
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है. फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है.
1: एग्जैक्टली.
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा. शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए. अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं. जब समय आ गया तभी करना है.
1: लास्ट आर
2: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई बच्चों के लिए, आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं. तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
1: करेक्ट
2: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
1: नहीं बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं भावना, आप तो कर रहे हो, मुझे रोक रहे हो। तो
0: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
1: कंटेंट आता है
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ही आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
1: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
2: मोबाइल से पढ़ो,
0: लेकिन मेरा फिर मैं बोलूंगी मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
1: करेक्ट,
0: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए। लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
1: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहें, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी है।
0: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने,
1: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं,
0: परफेक्ट परफेक्ट।
1: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे।
0: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पे भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
1: अगर
0: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
1: जो
0: होना चाहिए
1: लगता है हमें,
0: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए
1: जी,
0: ये बिल्कुल मत पूछिए कहाँ से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है। जी
1: जी,
0: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूं, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ,
2: बिल्कुल,
0: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
1: जी, सही बात है। वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है। ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वॉइस उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
0: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे, बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया 1 2 3 4 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से। वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
1: स्टे किया,
0: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
1: ओके।
0: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
1: करेक्ट।
0: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
1: जी।
0: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
1: ठीक है।
0: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है, कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
1: एग्जैक्टली।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11:00, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
1: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
0: आपको टाइम शेड्यूल कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला।
1: जी।
0: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
2: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं, रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करिए का, हम क्यों पढ़ाएं उन्हें। आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है, उनको पढ़ाई की, ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी, वहाँ के जो माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है।
0: भावना जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं।
2: जी
1: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं हम,
1: और वो भी सरकारी नौकरी से,
0: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो,
2: संभाल रही है,
0: लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
1: या संभाल सकती है,
0: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए, उसमें और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
2: बिल्कुल
1: ठीक है, बहुत सारी चर्चा हुई है मुझे लगता है कि, लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
0: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
1: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
0: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
1: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
0: बहुत जल्दी।
2: कितने घंटे देखें मोबाइल?
0: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
2: माँ बाप कितने घंटे देखें?
0: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
1: Correct.
0: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
1: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
0: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया,
1: जो होगा
0: वो देखा जाएगा।
1: ठीक है, बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
0: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
1: योगा करना चाहिए?
0: बिल्कुल करना चाहिए।
1: बच्चों के लिए कितना फिट है करना योगा?
0: बच्चों के लिए 110% फिट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
1: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
0: बिल्कुल देना चाहिए।
1: कितने टाइम का?
0: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स के बाद आप, अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
1: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।
2: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी।
0: और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो, जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
1: Exactly.
0: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
2: जी।
0: है तो बेहतर है, एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को, उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
2: बिल्कुल, श्रोताओं पूरा आसमान आपका है।
1: बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

अॼु समुझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हो

ಇನ್ನಾಯ ಇದು.

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर नारक

मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।